मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026, प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। समाचारों के तुरंत बाद FM बैंड 103.5 MHz पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। VCK और IUML पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और VD सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री

0: समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। चिंतन, जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक हम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आप सभी श्रोता अब सुनेंगे भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम वंदना।

यदि हम सत्य की राह पर चल रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं।

भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता नहीं चिंतन करो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और आगे भी जो होगा वह भी अच्छा ही होगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातःकाल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुई और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथेपन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवड़ी। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्हें पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवठरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

0: अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली बी सिंह के गायन स्वरों में सतीश भाटिया द्वारा संगीतबद्ध श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों राम राम। भाइयों कृषि की बातें में जिक्र करेंगे खेतों में गहरी जुताई के महत्व के बारे में। भाई जो हमारी धरती माता है दिन प्रतिदिन भाई हम उससे देमार फसल ले हुए हैं और हिसाब यूँ तो भी हम बना के रखें भी एक फसल हमने काट ली दूसरी का बीज हमारा घर ने दरिया है और कोशिश भाई यह रखें कि जितना भी इससे लिया जा भाई फायदा उठाया जाए वो उठावें और भाई फिर बाद में चल के ये हो जाए कि क्या करें भाई ज़्यादातर थोड़ा बोझ गणाए उठाना ठीक नहीं तो लेने की बजाय हम कुछ धरती माता देने की भी सोचें और देना उसमें ये है भाई हरी खाद ना चुनाव हम करें और प्रकृति के साथ हम चलें पेड़ पौधे हम लगावें और इसके साथ में थोड़ा सा ज़मीन ने उसान भी दें यानी एक फसल हमने ले ली तो फसल चक्कर तो हम अपनावें लेकिन साथ में थोड़ा सा मौका ऐसा भी दें कि धरती भी खाली रह जाए और उसमें अच्छी भाई जो गहरी जुताई हम कर दें और ताकि भाई उसमें अंदर जो सूत्रकर्मी हैं कई बार हमने देखा कि भाई हम 3-4 किले इकट्ठे बोले हैं कोई भी फसल का हम जिक्र करें धान है कपास है गन्ना है बाजरा है चारा वाली फसलें हैं उनमें कई बार ये हो जाए एक सा हम बीज दें एक सी हम खाद डालना है एक सा हम पानी लाओ हैं खाद उर्वरक सारा काम एक सा करें लेकिन फिर भी हम देखा कि जो हमारी फसल है बाजे बाजे किले में निमल रह जाए कम पैदावार उसकी हो है और उसका कारण है कि जो ज़मीन है उसके अंदर सूत्रकर्मी हो जाए और सूत्रकर्मी भाई हम नंगी आँख तक अगर देखना चाहो तो नहीं दिखेंगे इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सार का जो मृदा विज्ञान विभाग है उड़े इसकी जांच हो जिस तरह मिट्टी की जांच कराओ बेचारो कूड़े पत बीच में तो माटी लेके इसी तरह अलग से हमने उड़े बताना पड़ेगा कि भाई इसमें हमने जो है सूत्रकर्मी की समस्या है तो पैदावार हमारी अच्छी नहीं हो रही और अलग से इसकी जो है भी जांच करी जाए और बाकी ये मोटे तौर पर हम जिक्र करें जो भाई मिट्टी की जांच भाई नहीं करा सके तो भाई जिस तरह खेता नुकसान है धान की हम बात करें भाई नहीं लगाए या फिर बाजरा जिन भाइयों लगाना है बिरानी एरिया की हम बात करें गुवार जिन भाइयों लगाना है उन खेतों में खेत की गहरी जुताई कर दे पहले तो भाई तोता हमार पास हुआ कर दे काट के हड़ होया कर दे लेकिन आज मार दौरे से साधन आ रहे हैं पलाऊ आ रहे हैं खेत में हम खुला मार दें और किसी डाल का भी उस पर सुहागा पाटा मैज पिछ हम नहीं बांधे ताकि अच्छी जो खांग चल रहा है जिस तरह पूरा जो बिना है जेठ का खूब तपया है तपन लग रहा है और या जो तपिस है अगर जिन भाइयों ने भाई जमीन खुली छोड़ रखी बाके अंदर जाए तो जो सूत्रकर्मी है वो इसमें ख़त्म हो जाए और भी कई तरह के से कीट हैं जो ज़मीन में भाई अपना राह बना ले हैं कई बार हम भाई कोई खड़ा खोदे हैं बंदा रोके हैं तो हम देखा कई तरह के जो मोटे कीड़े हैं वो उसमें तो लिकड़े हैं वो भी अंदर अपना नमी ले ही जाए माटी खाई जाए हर पड़े रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है भाई गहरी जुताई के जो लाभ हैं फायदे हैं बहुत सारे हैं एक तो इसमें पानी भाई जो ज़मीन में जिस तरह भाई मौसम बता रखा है और प्री मानसून की भाई बाट देख रहे हैं तो उसमें भाई जमीन में जो जल धारण करने की क्षमता वह बढ़ेगी दूसरा नुकाग्रम भाई जो बाई है वह धोखा नहीं देगी भाई ब्याई जो है वो धोखा दे बुजुर्गों की कवावत है तो बाई उसमें बहुत ज़रूरी है विशेषकर जो हमारा बजेट का ये बागे साठ शुरू हो जाए साठ का जो बिन्ना है इन दिनों में जिन भाई अनाग चल के धान लगाने हैं बाजरा लेना है दूसरी फसल लेनी है खेत की अच्छी डाल गहरी खुली जुताई करके हम छोड़ दें ताकि उसमें जो खांग चल रहा है गर्मी चल रहा है वह नीचे तक पहुँचे और जितने भी जो भाई छोटे मोटे कीट हैं सूत्रकर्मी हैं वो उसमें ख़त्म हो जाए बाकी भी आगे चल के फिर बारिश आओ है मौका में हमने मिल जाए तो जो उसमें भाई नेचा है हरी खाद है वो भी हम लगा सके हैं तो भाई जितना भी धरती माता से हम ले वहाँ थोड़ा बहुत देने की भी इसने हम सोचा ताकि जो भाई हमारा संतुलन है प्रकृति का वो भी बना रहे और ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वह भी इसमें बनी रहे पहले हम देखा थे भाई बाढ़ वाली टिंड सी काचर हैं मती रहे हैं अपना आप इसमें ज़मीन में जमा कर दे आज हम जो भी फसल लगाए हैं वो कई बार तो हमने उथल करनी पड़े है उसका कारण ये है कि भाई ज़मीन की जो एक ताकत है वह इसमें कम होगी तो गहरी जुताई जितनी भी हम करेंगे उतनी जो है भाई धरती माता में ताकत है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा वो बढ़ेगी तो वह इन बातों का ध्यान रखें कृषि की बातों में इतना है आपका दिन शुभ हो।
0: ये थी कृषि की बातें। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरुनगरी आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम् एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य 70वीं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटिरूप्यकाणाम् अनेकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67-100 संख्याके राष्ट्रीय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिमबंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिमबंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्य समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, भाजपादलाध्यक्षः, अनेके मुख्यमन्त्रिणः, मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसे

0: विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतनसर्वकाररचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20+ शतविधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्रामसड़कयोजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दास्थले अद्य रजतजयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थ विभागेन आगामीषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचंड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धामालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30+200 धावनांकानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। VCK और IUML पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। कार्यक्रम रूपरेखा में लीजिए अब सुनिए हमारे आज के कार्यक्रमों की जानकारी।

शास्त्रीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवा संसार, प्रसारण समय 5:30। इस कार्यक्रम में आज का विशेषांक रहेगा युवा पसंद। बहनों का अपना कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे दीक्षा काजल से संयुक्त परिवार वर्सेस एकल परिवार, परंपरा या स्वतंत्रता, इस विषय पर बातचीत। प्रातः 7:35 पर कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह सवेरे। छोटे बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल कुंज आप सुनेंगे आज सुबह 8:30 पर। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में 7:00 आज आप सुनेंगे पूर्व प्रसारित नाटक या झलकी। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:20 पर आज हम आपको सुनवाएंगे विकास कुमार से पूर्व प्रसारित बातचीत, और इस बातचीत का विषय रहेगा गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल। कृषि जगत कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर आज चर्चा का विषय रहेगा बागों में करने वाले कृषि कार्य। सुगम संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में प्रातः 7:15 पर और रात 8:25 पर। एक फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:30 पर आपके अनुरोध पर। फोन पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:10 पर, और एक कलाकार ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 9:00। कार्यक्रम रूपरेखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के प्रसारण की जानकारी।

आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है और प्रस्तुत है श्रोताओं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं मनीलाल मिश्रा।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं मणिलाल मिश्रा।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कलाकार मणिलाल मिश्रा को। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

हमारी सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आप सभी को आपकी रेडियो साथी शेफाली राणा का नमस्कार।

श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 10 मई यानी महीने का दूसरा रविवार। और आपको बता दें कि मई महीने के दूसरे रविवार को हर साल हम मनाते हैं मदर्स डे यानी मातृ दिवस। तो सभी हमारी जो श्रोता माताएं हैं, विशेषकर उन्हें आज के इस दिन की ढेरों शुभकामनाएं। मातृ दिवस यानी मदर्स डे एक ऐसा विशेष दिन है जो दुनिया भर में माताओं के अटूट प्रेम, त्याग और उनके निस्वार्थ समर्पण को समर्पित है। हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाए जाने वाला ये दिन हमें अपनी माँ के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर देता है। श्रोताओं, माँ ये एक शब्द ही अपने आप में संपूर्ण है। जी हाँ, ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। एक माँ न केवल बच्चे को जन्म देती है बल्कि वो उसकी पहली गुरु और संरक्षक भी होती है। मातृ दिवस इसी महान व्यक्तित्व को सम्मानित करने का एक वैश्विक उत्सव है और वो महान व्यक्तित्व है हमारी माँ। आज के दिन के इतिहास की बात करें तो आपको जानकारी दे दें श्रोताओं कि मातृ दिवस मनाने की जो आधुनिक शुरुआत है वो अमेरिका में एना जॉर्विस द्वारा की गई थी, जो अपनी माँ से बहुत जुड़ी हुई थी। और आज ये दिन पूरे विश्व में माताओं के प्रति सम्मान दिखाने के लिए मनाया जाता है। ये सम्मान केवल दिखाने मात्र का ही ना रह जाए, ये मन से ही रहना चाहिए, ये हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। और मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है श्रोताओं कि समाज में माताओं के योगदान को रेखांकित करना और बच्चों को उनके प्रति संवेदनशील बनाना है, उन्हें जागरूक करना है, बच्चों को ये बात समझानी है। और माँ की भूमिका के बारे में बात करें तो ये तो जग जाहिर है कि एक माँ का प्यार निस्वार्थ और बिना शर्त के होता है। वो सुबह सबसे पहले उठकर परिवार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है और रात को सबसे बाद में सोती है। वो बच्चे के दुख में दुखी और उसकी सफलता में सबसे अधिक प्रसन्न होती है। माँ के संस्कारों से ही एक व्यक्ति मानवता के गुणों को सीखता है, ये हमें बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। और बात करें मातृ दिवस यानी मदर्स डे को मनाने की, तो इस दिन को खास बनाने के लिए बच्चे अपनी माँ को उपहार, फूल या फिर हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड भी देते हैं। हालांकि माँ को खुश करने के लिए किसी महंगे उपहार की आवश्यकता नहीं होती, उनके साथ कुछ पल बिताना और

प्यार से धन्यवाद कहना ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। तो श्रोताओं, हमें अपनी माँ का सम्मान केवल साल के एक दिन नहीं बल्कि हर दिन करना चाहिए, हर पल करना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात कि दिल से करना चाहिए। माँ के बिना जीवन अधूरा है और उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, इस समय आपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का रोहतक केंद्र और कार्यक्रम जारी है सुबह सवेरे। बात अब करते हैं श्रोताओं, गर्मियों के मौसम में पर्यावरण का ख्याल हमें कैसे रखना चाहिए इस विषय पर। जी हाँ श्रोताओं, गर्मियों के मौसम में पर्यावरण का ख्याल रखना न केवल प्रकृति के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अनिवार्य है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ रहा है, हमें अपनी जीवन शैली में भी कुछ छोटे मोटे बदलाव करने की आवश्यकता है। और यहाँ गर्मियों में पर्यावरण संरक्षण के बारे में अगर बात करें तो जल संरक्षण सबसे पहले आता है। जी हाँ, गर्मियों में पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन जाती है। जैसे ब्रश करते समय नल बंद रखना, शॉवर की जगह बाल्टी का उपयोग करना, पौधों को सुबह या शाम के समय ही पानी देने जैसी आदतों को हम अपना सकते हैं, और बिजली की बचत। जी हाँ, जल संरक्षण के बाद बात आती है, जो मुख्य बिंदु होता है वो होता है बिजली की बचत। आवश्यकता ना होने पर लाइट और पंखे हमें बंद कर देने चाहिए। दरअसल क्या होता है कि हमें पता तो होती है ये बातें, लेकिन लापरवाही के चलते हम इन चीज़ों पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाते। लेकिन श्रोताओं, हमें थोड़ा सा सजग रहना ही पड़ेगा अगर हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर पर्यावरण है तो हम हैं। तो बात हम बिजली की बचत की कर रहे थे, तो दिन के समय प्राकृतिक रोशनी का उपयोग हमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ खिड़कियों पर पर्दे लगाकर हम घर को ठंडा रखने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे एयर कंडीशनर का उपयोग कम होगा। इसके अलावा वृक्षारोपण, जी हाँ, पेड़ न केवल हमें छाया देते हैं बल्कि वातावरण के तापमान को भी कम करते हैं। अपने घर के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनकी नियमित देखभाल भी करें। पर्यावरण की देखभाल में अगला जो विचार हमारे मन में आता है वो आता है प्लास्टिक का त्याग। जी हाँ, गर्मियों में बाहर जाते समय पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें, ताकि आपको प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग ना करना पड़े। जो स्टील की बॉटल्स होती हैं उसका प्रयोग करें, और इसके अलावा जो प्लास्टिक का कचरा होता है उसे भी हम सभी को कम जो है उसका प्लास्टिक के कचरे का जो सही उसको सही जगह पर रखना चाहिए, और कागज़ के थैलों का उपयोग करना जो है वो एक आदर्श विकल्प प्लास्टिक के पॉलीथिन की जगह हो सकता है। और इसके अलावा गर्मियों का मौसम है तो और पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, तो पशु पक्षियों को हम कैसे भूल सकते हैं श्रोताओं। जी हाँ, भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों और जानवरों के लिए घर की छतों या बालकनी में हम पानी और दाना रख सकते हैं, जो जैव विविधता को बनाए रखने का एक मानवीय तरीका है। तो बात समझ के यह है श्रोताओं कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। अगर हम आज सचेत नहीं हुए तो भविष्य में हमें और भी गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो पर्यावरण के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और गर्मियों में ताज़ा भोजन और पर्याप्त पानी हमेशा ही पीते रहें।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो साथी शेफाली राणा को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रातः के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले होंगे हिंदी में, उसके बाद 8:15 पर अंग्रेज़ी में। रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट

0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुँचने की संभावना है।
1: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
2: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
6: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान

0: तन्मान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाड और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाड में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चित समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे।

0: सभी साथी मिलकर बोलेंगे जय हिंद। जय हिंद साथियों, आज मैं युवराज
1: और मैं सृष्टि
0: आप सभी का आज के इस बालकुंज कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं पौधा स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। यह दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पौधों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हमें ऑक्सीजन, भोजन और औषधियाँ प्रदान करते हैं। यदि पौधे स्वस्थ नहीं होंगे तो इसका असर मानव जीवन और पर्यावरण पर पड़ेगा। कीटों और बीमारियों के कारण फसलों का नुकसान होता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि पौधों की देखभाल करना कितना ज़रूरी है। अंत में अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य हेतु दिवस यह संदेश देता है कि स्वास्थ्य पौधे ही स्वस्थ जीवन और सुरक्षित भविष्य का आधार हैं।
1: साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर भी कुछ बताना चाहूँगी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज हर साल 15 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य परिवारों के महत्व, उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन परिवार के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में संकल्प के माध्यम से इसकी घोषणा की और पहला दिवस 1994 में मनाया गया। यह दिन हमें परिवार के साथ समय बिताने, उनके प्रति आभार व्यक्त करने और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने की याद दिलाता है। वर्ष 2026 की थीम परिवार, असमानताएं और बल कल्याण है। साथियों, अब सुन लेते हैं एक गीत

0: कैसा लगा साथियों?
1: बहुत अच्छा सृष्टि। साथियों अब सुन लेते हैं NCERT द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिसका शीर्षक है मेरी माँ।
2: अखिल देखा अभी तक रमेश नहीं आया। थोड़ी देर में सूरज छिप जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर कैसे खेलेंगे?
3: पता नहीं रमेश क्या करता रहता है, हर रोज कहते हैं जल्दी आया कर जल्दी आया कर, पर हर रोज देर से आता है। चलो नीरज हम और तुम ही खेलते हैं।
2: दो जनों में क्या खेल होगा?
3: हाँ चलो गेंद खेलते हैं, मैं तुम्हारी तरफ गेंद फेंकता हूँ तुम पकड़ना, फिर तुम मेरी तरफ फेंकना मैं पकड़ूंगा। हाँ अगर गेंद ने बीच में टप्पा खा लिया तो पॉइंट कट जाएगा, ठीक है?
2: ठीक है लो पकड़ो गेंद।
3: सर मर गया।
2: क्या हुआ अखिल, चोट लग गई?
3: नहीं कुछ ज्यादा नहीं है।
2: अरे तुम्हारे अंगूठे पर ये पट्टी कैसी है?
3: मैं गेंद पकड़ने की कोशिश कर रहा था ना तो गेंद चोट पर लग गई।
2: और ये चोट कैसे लगी?
3: अंगूठा कट गया था।
2: कट गया था? हाँ। कैसे?
3: अरे वो देखो रमेश आ गया।
2: अरे हाँ
4: माफ करना दोस्त,
2: आज तुम फिर देर से आए।
4: देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि जब मेरी माँ काम से वापस आती है मैं तभी खेलने आ सकता हूँ।
3: लेकिन रमेश।
4: लेकिन कुछ नहीं अखिल, तुम समझते क्यों नहीं, तुम्हारी माँ की तरह मेरी माँ घर पर नहीं रहती, वह दफ्तर जाती है काम करने।
3: तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी माँ कुछ काम ही नहीं करती?
4: क्या करती है, सारा दिन घर में ही तो रहती है।
3: अच्छा और घर में क्या कोई काम ही नहीं होता?
4: क्या काम होता है?
2: अच्छा जी कभी घर पर रहकर माँ के काम गिनो तो पता चलेगा कि वो कितना काम करती है।
3: और क्या जानते हो परसों क्या हुआ?
4: क्या हुआ?
3: माँ को बुखार आ गया, वो तो ये कहो कि इतवार था छुट्टी का दिन, नहीं तो ना मैं और ना मेरी बहन स्कूल जा पाते और ना पिताजी अपने काम पर।
4: क्यों क्या हुआ?
3: रोज सुबह हमें माँ उठाती है ना, लेकिन परसों।
5: अखिल उठो बेटा उठ, देखो सूरज चढ़ आया है, चलो उठो।
3: अरे पिताजी आप, माँ कहाँ है?
5: बेटा तुम्हारी माँ को कल रात से तेज बुखार है।
3: अच्छा?
5: सारी रात बेचैनी रही, सुबह के समय जाकर आंख लगी है उनकी, वो सो रही हैं। मैंने सोचा नाश्ते का प्रबंध हमें ही करना चाहिए।
3: हाँ हाँ पिताजी बिल्कुल, माँ को आराम की जरूरत है। आप चलिए मैं भी आता हूँ।
5: ठीक है।
3: और वो राधा कहाँ है पिताजी?
5: वो घर की सफाई कर रही है, हम और तुम नाश्ता बनाएंगे, ठीक है ना?
3: ठीक है मैं अभी आया पिताजी।
5: हाँ जल्दी आ जाना।
3: अच्छा पिताजी।
5: अखिल।
3: हाँ?
5: देखो बेटा मैंने वो दूध उबालने रखा है, हाँ? तुम जरा नजर रखना।
3: अच्छा।
5: मैं इतने ये डबल रोटी सेकता हूँ।
3: डबल रोटी? आज क्या डबल रोटी खानी पड़ेगी, माँ तो रोज ताजा नाश्ता बनाती है।
5: हाँ बेटा लेकिन आज माँ बीमार है ना, और मुझे कुछ और बनाना आता ही नहीं।
3: चलिए कोई बात नहीं डबल रोटी ही सही।
5: जाने कहाँ रखा है, वो यहाँ भी नहीं है। अरे यहाँ भी नहीं, कहाँ गया, कहाँ?
3: क्या ढूंढ रहे हैं पिताजी?
5: अरे वही जिस पर डबल रोटी सेकते हैं।
3: मुझे मालूम है वो कहाँ है, अभी लाया। ये रखा यहाँ अलमारी में, ये लीजिए।
5: अच्छा तो इस पर डबल रोटी सेकते हैं।
3: हाँ इस पर डबल रोटी के टुकड़े रखिए और फिर इसी आग पर रखिए, डबल रोटी सिक जाएगी।
5: अच्छा बस इतना ही? ठीक है तो ये रहे डबल रोटी के चार टुकड़े।
3: हाँ।
5: अखिल तुम कितने खाओगे?
3: मैं दो।
5: हाँ ठीक है दो तुम्हारे हो गए, दो तुम्हारी बहन के और दो मेरे, तो ये हुए कुल छह।
3: और माँ के पिताजी डबल रोटी तो वो भी खा सकती है।
5: हाँ हाँ वो भी खा सकती है, तो ये हुए कुल आठ। ठीक है पहले चार सेकते हैं।
3: हाँ।
5: अरे ये क्या हुआ?
3: लगता है राधा से कुछ टूट गया है।
5: राधा से? राधा, राधा, राधा बेटे, राधा क्या हुआ बेटे, कुछ गिर गया क्या?
0: मैं इसकी झाड़पोंछ कर रही थी कि ये फूलदान गिर गया।
3: ओफो राधा, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। जानती हो ये फूलदान पिताजी पिछली दिवाली पर लाए थे, कितना महंगा था।
5: ओफो चुप रहो अखिल। ना राधा बेटा कोई बात नहीं, अरे टूट गया तो टूट गया। रोने रोने, शाबाश, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। चलो चलो झटपट आंसू पहुंचो अपने। हाँ हाँ शाबाश। अच्छा लाओ बेटा, लाओ ये झाड़ू मुझे दे दो, जरा मैं कांच बटोर दूं। अरे हाँ अखिल, जरा एक कागज तो दो, इस कांच को बटोर कर फेंकना है। अखिल
3: पिताजी, लगता है कुछ जल रहा है।
5: हाँ
3: हाँ,
5: कुछ बदबू तो आ रही है।
3: हाँ।
5: अरे बाप रे, वो मैंने डबल रोटी सेकने रखी थी ना, लगता है जल गई।
3: हाँ।
5: राधा बेटे तुम ये कांच बटोरो, मैं जरा डबल रोटी देखूं जाकर क्या हुआ उसका।
2: तो तुमने उस दिन जली हुई डबल रोटी खाई?
3: अरे जली हुई डबल रोटी क्या, उस दिन तो दूध भी नहीं मिला।
4: क्यों?
3: जब मैं और पिताजी रसोई घर की ओर दौड़े तो देखा कि डबल रोटी के टुकड़े भी जल चुके हैं और दूध उबलकर आधे से ज्यादा बह चुका है। सफाई करने में और आधा घंटा लग गया।
2: तो फिर तुमने नाश्ता किया या नहीं?
3: बस पिताजी ने जैसे तैसे चाय बनाई और कच्ची डबल रोटी पर मक्खन लगाकर हमें नाश्ता कराया। फिर हमने जाकर माँ को जगाया और उन्हें भी वही नाश्ता कराया।
2: और तुम्हारा अंगूठा कैसे कटा?
3: ये सब्जी काटते हुए कटा।
4: तुमने सब्जी काटी?
3: हाँ भाई, नाश्ता तो पेट भरकर किया नहीं था, इसलिए दोपहर तक भूख लगने लगी। माँ ने बहुत कहा कि वो उठकर खिचड़ी बना देगी, लेकिन हमने उन्हें उठने ही नहीं दिया। मेरी बहन बोली कि अगर आटा गूंदा हुआ हो तो वो पराठे बना देगी। पापा ने मुझसे कहा कि मैं लौकी काट दूं तो वो सब्जी बनाने की कोशिश करेंगे।
2: फिर तुमने लौकी की जगह अपना अंगूठा काट लिया।
3: हाँ यार, पता नहीं माँ कैसे इतनी जल्दी जल्दी सब काम कर लेती है।
4: फिर तुमने अचार से पराठे खाए क्या?
3: अरे कैसा अचार और कैसे पराठे।
2: क्यों, तुम्हारी बहन को तो पराठे बनाने आते थे।
3: हाँ आते थे, लेकिन आटा गूंदा हुआ हो तब तो।
4: अच्छा फिर क्या हुआ?
3: पापा ने कहा आटा गूंदने में क्या बड़ी बात है। उन्होंने कनस्से से आटा निकाला और उसमें पानी डाला, बस परात में आटे का तालाब बन गया।
2: मतलब ये कि तुम लोग भूखे रहे।
3: नहीं नीरज, जब सब्जी पराठे की आशा नहीं रही तो सोचा खिचड़ी ही बना के खा ले।
2: तो फिर तुम्हारी माँ ने खिचड़ी बनाई?
3: नहीं, हमने माँ को उठने ही नहीं दिया, उनसे पूछ पूछ कर खिचड़ी बनाई, खुद भी खाई और माँ को भी खिलाई। जानते हो माँ को खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट लगी।
2: क्यों नहीं, आप कहो रमेश, घर पर रहने वाली माँ कितने काम करती है।
3: हाँ,
4: हाँ यार तुम ठीक कहते हो।
3: हाँ अब तो हमने तय कर लिया है कि हम रोज घर के काम काज में माँ का हाथ बटाएंगे, सब काम सीखेंगे, जिससे वो सब ना हो जो परसों हुआ था।
2: हाँ।

0: साथियों, कार्यक्रम कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा युवराज।
2: साथियों, यह कार्यक्रम माँ पे आधारित था और साथियों आज तो मदर्स डे है, तो मैं इस पर कुछ बोलना चाहूंगी। मदर्स डे माँ के प्यार, त्याग और ममता को सम्मान देने का विषय प्रदान करता है। माँ हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होती है। वह हमें बचपन से प्यार, संस्कार और सही शिक्षा देती है। माँ हर सुख दुख में हमारा साथ निभाती है और हमेशा हमारी खुशी के बारे में सोचती है। उनका प्रेम निस्वार्थ और अनमोल होता है। माँ के बिना जीवन अधूरा लगता है। मदर्स डे के दिन बच्चे अपनी माँ को धन्यवाद कहते हैं और उन्हें विशेष महसूस कराने की कोशिश करते हैं। हमें हर दिन अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों का पालन करना चाहिए। युवराज, अब कर लेते हैं अपने साथियों से बातचीत।
0: हाँ सृष्टि, हमारा पहला साथी अपना नाम बताए।
3: सूर्यांश।
0: सूर्यांश, आज आप हमारे लिए क्या लाए हैं?
3: एक कविता।
0: सुनाइए।
3: उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही ना रात ना रहा अंधेरा, रही ना चंदा की उजियाली, डाल डाल पर बैठे पक्षी चह चह चह चह चहक रहे हैं, खिले फूल मुस्काई करिया सारे उपवन महक रहे हैं, हवा बह रही धीमी धीमी शीतल मंद और सुखदाई, जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई, कण कण पर बिखरे हैं मोती, कण कण बिखरी हैं मणिया, कितनी मनोहर कितनी सुंदर सुखद सुहानी ये घड़ियां। धन्यवाद
0: सूर्यांश, आपने तो हमें बहुत अच्छी कविता सुनाई।
2: अगला साथी अपना नाम बताए।
4: अनन्या।
2: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
4: कुछ रोचक तथ्य।
2: सुनाइए।
4: पेड़ों की गिनती। पृथ्वी पर आकाश गंगा के सितारे की तुलना

0: कहीं ज्यादा पेड़ हैं। जहां अंतरिक्ष में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं, वहीं पृथ्वी पर लगभग 3 ट्रिलियन यानी कि 3 लाख करोड़ पेड़ हैं। अक्षय वर्षा, बादल दिखने में हल्के लगते हैं लेकिन एक औसत सफ़ेद बादल का वजन लगभग 5 लाख केजी हो सकता है। यह लगभग 100 हाथियों के बराबर है। इंसानी शरीर, अनोखे फिंगरप्रिंट्स, केवल अपनी उंगलियों के निशान ही नहीं बल्कि अपनी जीभ के प्रिंट भी पूरी दुनिया में सबसे अलग होते हैं। लोहे की मात्रा, एक स्वस्थ वयस्क इंसान के शरीर में इतना लोहा होता है कि उसमें 3 इंच लंबी कील बनाई जा सकती है। बैक्टीरिया का घर, अपने शरीर में मौजूद कोशिकाओं से यानी कि सेल्स से कई ज़्यादा संख्या में बैक्टीरिया मौजूद हैं। धन्यवाद।
1: अरे वाह अनन्या, आपने तो हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक तथ्य बताए।
2: आयुष, आज आप हमारे लिए क्या लाए हैं?
3: एक कविता
2: सुनाइए।
3: उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, हंस देख कर काला कौआ मन ही मन शर्माया। लगा सोचने, उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं, उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊं। यही सोचता मेरे घर पे आया काला कौआ और स्नान घर से मेरी साबुन लेकर भागा। फिर जाकर नदी पर खूब साबुन लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया, पास हंस के कभी न फिर वह काला कौआ आया। धन्यवाद।
1: अगला साथी अपना नाम बताए।
4: सुहानी,
1: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
4: एक कविता
1: सुनाइए।
4: कर्मा का वंदन अभिनंदन बन जाए है जीवन कुंदन, रुदन सारा हो जाए दूर, विपदा हो जाए चकनाचूर। महका रहे यह घर आंगन, खेलेंगे प्रसन्न मन भावन, जीवन लगेगा नव आकार, छुट दूर भागेंगे सब विकार। मासा नहीं कोई भी हितकारी, माँ जैसा ना कोई सुखकारी, आओ माँ का मान बढ़ाए, नीति ही माँ की शान बढ़ाए। माँ हंसेगी जग हंसेगा, कण कण में अमृत रसेगा। धन्यवाद।
1: अरे वाह सुहानी, आपने तो माँ पे बहुत ही अच्छी कविता सुनाई।
2: साथियों, अब आगे चलते हुए बात कर लेते हैं सिक्किम दिवस के बारे में। सिक्किम दिवस हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। यह दिन सिक्किम के भारत में विलय की याद में मनाया जाता है। सिक्किम भारत का एक सुंदर और छोटा राज्य है जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। इसकी राजधानी गंगटोक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल और शांत वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कंचनजंगा पर्वत, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम में स्थित है। सिक्किम अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं और कई त्यौहार मनाते हैं। यह राज्य पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जाना जाता है और इसे भारत का स्वच्छ और हरित राज्य माना जाता है।
1: साथियों, आगे चलते हुए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल 16 मई को मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, संस्कृति, कला और सतत विकास में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए समर्पित है। यह दिवस 16 मई 1960 को भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर की पहली सफल संचालन की वर्षगांठ का प्रतीक है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिवस दिखाता है कि कैसे प्रकाश और उससे संबंधित तकनीकी, चिकित्सा, संचार, ऊर्जा और कला में हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। साथियों, प्रकाश हमारे जीवन का आधार है जो न केवल हमें दुनिया दिखाने में मदद करता है बल्कि स्वास्थ्य, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता के लिए भी अनिवार्य है। यह ऊर्जा का

0: प्राथमिक स्रोत है जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन, ऑक्सीजन और वातावरण को नियंत्रित करता है तथा दिन रात के चर्क को विनियमित कर हमारे सोने जागने के पैटर्न को सही रखता है।
1: साथियों, आगे चलते हुए सुन लेते हैं गीत।

0: गीत कैसा लगा साथियों?
1: बहुत अच्छा सृष्टि।
0: साथियों, यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले सप्ताह नई कविताएं, कहानियां और गीत के साथ। अब सभी साथी मिलकर बोलेंगे
2: जय हिंद।
3: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

बच्चे सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम बाल कुंज, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम, एक कलाकार। और हमारे आज के कलाकार हैं फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र।

भारतीय सिनेमा के इतिहास में धर्मेंद्र एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी अदाकारी और व्यक्तित्व से दर्शकों के दिलों पर दशकों तक राज किया है। उन्हें बॉलीवुड का ही मैन और गरम धर्म के नाम से भी जाना जाता है।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से श्रोताओं, इस समय कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एक कलाकार। और इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र। धर्मेंद्र के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म 8 दिसंबर वर्ष 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसाली गांव यानी सहनेवाल में हुआ था। उनका असली नाम धर्म सिंह देओल है और उनके पिता किशन सिंह देओल एक स्कूल हेडमास्टर थे। धर्मेंद्र का बचपन पंजाब की मिट्टी में बीता।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है रेडियो सेट पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र और कार्यक्रम जारी है एक कलाकार। हमने आपको धर्म जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया कि 8 दिसंबर वर्ष 1935 को पंजाब के कपूरथला ज़िले के नसराली गांव में उनका जन्म हुआ था और उनका पूरा नाम धर्म सिंह देओल था। उनके पिता एक स्कूल में हेडमास्टर थे और वो ये चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करे, लेकिन धर्मेंद्र जी के दिल में बचपन से ही फिल्मों के प्रति गहरा लगाव था। क्या आपको पता है कि वो मीलों पैदल चलकर फिल्म देखने जाया करते थे और आखिरकार देखिए क्या हुआ। ये तो जग जाहिर है, एक इतिहास बन चुका है कि अभिनय की चाह उन्हें अपने सपनों की नगरी मुंबई में ले आई और यहाँ उन्होंने शुरुआती दिनों में कड़ा संघर्ष करना पड़ा और यहाँ तक कि कई बार उन्हें खाली पेट भी सोना पड़ा। लेकिन उनकी जो ये संघर्ष था वो जाया नहीं गया, उन्हें सफलता मिली तो क्या खूब मिली।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: भारतीय फिल्म जगत में धर्मेंद्र केवल एक अभिनेता का नाम नहीं बल्कि एक युग का नाम है। पिछले 6 दशकों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे धर्मेंद्र जी को बॉलीवुड का पहला मसल मैन

या ही मैन कहा जाता है। उनकी शख्सियत में ये जहाँ एक और फौलादी मजबूती दिखती है, वहीं दूसरी ओर उनकी आँखों में एक मासूमियत और सादगी झलकती है जिसने उन्हें गरम धर्म के साथ साथ एक बेहद मिलनसार इंसान के रूप में भी स्थापित किया।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी? नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: श्रोताओं, इस समय आपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का रोहतक केंद्र, और कार्यक्रम जारी है एक कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी ने वर्ष 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे इस फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। वर्ष 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उनकी शारीरिक जो सशस्त्र था और उन पर केंद्रित जितने भी दृश्य थे वहाँ से उन्होंने रातों रात एक एक्शन आइकन जो है उनको बना दिया। धर्मेंद्र जी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा। और अब कार्यक्रम के इस मोड पर आपको सुनवाते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है दुल्हन एक रात की इस फिल्म से।

धर्मेंद्र जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी वर्सेटैलिटी थी। गीत से पहले हमने इस बारे में आपसे बात की थी श्रोताओं। वर्सेटैलिटी का मतलब यहाँ पर बहुमुखी प्रतिभा से है, चाहे वो एक्शन हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो, सब में वो दक्ष रहे हैं। एक्शन की बात करें तो मेरा गांव, मेरा देश और हुकूमत जैसी फिल्मों में उन्होंने ज़बरदस्त एक्शन दिखाया है। वहीं अगर हम रोमांस की बात करें तो अनुपमा और आए दिन बाहर के जैसे फिल्मों में उन्होंने एक संवेदनशील प्रेमी की भूमिका निभाई। कॉमेडी की बात करें तो चुपके चुपके और शोले में उनकी बेहतरीन कॉमेडी की टाइमिंग ने सभी को लोटपोट कर दिया।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से कार्यक्रम एक कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र।

बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र जी एक बेहतरीन शायर और कवि भी थे। वे अक्सर अपनी भावनाओं को उर्दू और हिंदी शायरी के माध्यम से व्यक्त किया करते थे। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो जिनमें वे अपनी लिखी हुई नज़मों को सुनाते काफ़ी लोकप्रिय हुए। उनकी शायरी में पंजाब की मिट्टी की खुशबू, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा और पुरानी यादों का दर्द छलकता है।

अपने अंतिम वर्षों में धर्मेंद्र जी ने खुद को चकाचौंध वाली फिल्मी दुनिया से दूर कर लिया और अपने फार्म हाउस में वो समय बिताने लगे। वे अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी गायों, फसलों और ताज़ी सब्जियों के वीडियो साझा किया करते थे। उनका मानना था कि इंसान को अपनी जड़ों की ओर वापस लौटना चाहिए। उनका ये किसान अवतार युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा बना और कई अपनी वीडियोस में उन्होंने ये कहा भी, खास तौर पर विशेषकर युवाओं से उन्होंने ये कहा कि आप अपने जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह की इंस्पिरेशनल बातें भी वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया करते थे।

श्रोताओं, धर्मेंद्र जी का जीवन संघर्ष से सफलता और फिर शांति की तलाश की एक अद्भुत यात्रा है। उन्होंने साबित किया कि एक छोटे से गांव का लड़का अगर अपने सपनों पर अड़िग रहे तो वो पूरी दुनिया जीत सकता है। वे न केवल एक अभिनेता थे बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने प्यार और भाईचारे को हमेशा कामयाबी से ऊपर रखा।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम एक कलाकार अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद 10:05 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में। रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं और वे इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: पहली वर्षगांठ मनाई है, और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
0: बाद में प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में भी शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय अब से कुछ देर में चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैम जेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। तिरुपति में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। और IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

फिनबैंड 103.5 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी हैं। मीडियम वेव 262.47 मीटर पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। दिन में 12:30 पर हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यू जोन AIR पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 हो चुके हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम घर आंगन।

0: मेरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को पूजा का नमस्कार और रेनू आपको भी मेरा नमस्कार।
0: और सबसे पहले हम बहनों को आज मातृ दिवस की बधाई देते हैं, क्योंकि आज 10 मई है और हर प्रति वर्ष मई के दूसरे संडे को, रविवार को यानी, मातृ दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस होता है माताओं को सम्मान देने, उनके प्यार और त्याग के लिए धन्यवाद कहने का। तो इसीलिए हम इस दिन को मना रहे हैं और हमारी सभी बहनों को इस मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो अभी माता बनने वाली हैं उनके लिए भी आगामी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल रेनू, और क्या माँ के लिए कोई एक जो है दिन वो काफ़ी है? माँ वो है जिसकी दुआएं वक्त बदल देती है और जिसकी ममता हर जख्म भर देती है। आज का दिन सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं है, उन्हें शुक्रिया कहने का दिन है। माँ वो शख्स है जो गिरने से पहले हमें थाम लेती है। किसी ने खूब ही कहा है, जब दवा असर ना करे तो वह नज़र उतारती है। वो माँ है जनाब, वो कहाँ हार मानती है।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो पूजा। माँ का अक्स तो हमारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है, हर जगह। माँ के बगैर हमारा जीवन कुछ नहीं है। भाई, इस जीवन में हम आए उनके कारण से हैं, और फिर आगे जो भी कुछ हम बन पाए हैं वो सब कुछ माँ की बदौलत है।
1: बिल्कुल, और वो माँ वो है जो हमारे बोले बिना जो है हमारी हर बात समझ लेती है। चोट हमें लगती है पर दर्द उसे होता है, इसलिए आज घर जाते समय अपनी माँ के लिए कोई तोहफा लेकर जाए ना जाए, लेकिन उन्हें एक जादू की जो झप्पी है वो ज़रूर दें, क्योंकि उनके लिए वह दुनिया का जो सबसे अनमोल जो है वो तोहफा होगा।
0: बिल्कुल, और माँ के निस्वार्थ प्रेम, मेहनत और परिवार के लिए किए गए त्याग को याद करने का ये मौका है। और बहनों, ये बात अलग है कि हम ये मातृ दिवस मना रहे हैं, परंतु हर दिवस मातृ दिवस है, क्योंकि माँ के बगैर तो जीवन का अस्तित्व ही नहीं है ना। तो पहले इसकी शुरुआत हमारे देश में तो अभी 1990 के दशक के बाद से ही इसकी शुरुआत हुई है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। वरना तो अमेरिका में मनाया जाता था ये, और वहाँ पर थोड़ा कल्चर अलग तरह का है, हमारे देश का कल्चर अलग है, तो इसलिए। पर अब धीरे धीरे जब ये एक ट्रेंड बन गया है तो हम भी इसे मना रहे हैं और मातृ दिवस की हम फिर से बहनों को बधाई देते हैं। और साथ साथ हम ये देख, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना कि माँ का अक्स हर जगह पे है और माँ घर के चप्पे चप्पे पे छाई हुई है, तो हम देखते हैं कि जो घर में हम पौधे पालते हैं, पौधे लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ पर सब जगह माँ है, क्योंकि माँ को हर चीज़ की चिंता होती है, ना सिर्फ अपने बच्चों की, उनके स्वास्थ्य की भी और उनके जीवन के हर पहलू की। तो माँ को पता है कि घर में पौधे लगेंगे तो वो हमारे सारे परिवार के लिए ऑक्सीजन पैदा करेंगे और हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। तो बहनों, हम 12 मई को पौधा स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं, और इस सब की भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने आसपास के पौधे लगाएं, और ना सिर्फ लगाएं बल्कि बच्चों को भी उसके लिए प्रेरित करें और उनका ध्यान रखने के लिए भी हम उन्हें प्रेरित करें। और साथ साथ परिवार की बात अगर हम करते हैं तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस तो है ही है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि रेनू, दुनिया की भीड़ में हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, शाम को सुकून की तलाश में हमें एक ही जगह है जो है लेकर जाती है, वो है हमारा घर।
0: हाँ, और इसके लिए कितने दूर दूर से हम चल के नौकरी के लिए जाते हैं, फिर वापस शाम को आते हैं, ताकि हम परिवार के साथ रहें।
1: बिल्कुल, और पता है परिवार वो इकलौती जगह है जहाँ आप बिना किसी दिखावे के रह सकते हैं। माँ के हाथ का खाना, पिता की वो डांट जिसमें फिक्र छिपी होती है, भाई बहन से वो छोटी मोटी नोक झोंक और दादा दादी की पुरानी कहानियाँ, यही तो वो धागे हैं जिनसे हमारी जिंदगी की जो है चादर बुनी होती है।
0: ठीक ठीक कह रही हो पूजा। और परिवार का तो महत्व ही अलग है। अब जैसे बच्चे बाहर जाते हैं ना खेलने के, सॉरी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ हैं, वो दौड़ते हैं वापस छुट्टियां होते ही और आके बोलते हैं, मम्मी आपके हाथ का जो भी बना हुआ है ना वही खिला दो। और फिर सबसे मिलते जुलते हैं, क्योंकि परिवार का समझ आता है ना, जब हम घर से दूर जाते हैं तब समझ आता है। और आज हमारे साथ हमारी मेहमान भी तो आई हुई है।
1: जी जी बिल्कुल, और जैसा कि भी आपने भी बताया कि जैसे कि हम जो है 15 मई को परिवार दिवस जो है वो मनाने जा रहे हैं, और इसी विषय पर जो है आज जो हमारी जो चर्चा का विषय है वो है संयुक्त परिवार और एकल परिवार, स्वतंत्रता या परंपरा।
0: हाँ,
1: और इस विषय पर जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में जो है दीक्षा काजल जी हैं, तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद रेनू जी और पूजा जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, रेनू जी, पूजा जी और सभी श्रोतागणों को। और रेनू जी और पूजा जी, आप लोगों का बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं, वो भी इतने अच्छे विषय पर। और आज सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। जो माँ बन चुकी हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है आज का, महत्वपूर्ण है, और जो अब बनने वाली हैं उनके लिए भी एक नए एहसास का जरिया है ये।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारी बहनें बेताब हैं कि हम वो सुनें कि हम क्या बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी बातचीत का विषय है आज, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, परम्परा या स्वतंत्रता, ये एक बहुत ही विस्तृत विषय है और इसको हम इतने थोड़े से समय में बांध नहीं सकते, परंतु हम बहुत ज़रूरी ज़रूरी बातें इससे संबंधित करेंगे, क्योंकि संयुक्त परिवार हमारे देश की परंपरा है और हम देखते हैं कि हम सदियों से संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। मनुष्य ने जैसे जैसे प्रगति की, उसने परिवार को इकट्ठा रहना शुरू किया, परिवार को इकट्ठा किया और रहना शुरू किया, और फिर वहाँ से सभी धीरे धीरे अब बाहर भी निकलने लगे हैं। वो संयुक्त परिवार का मतलब विघटन भी हो रहा है, वो दूर दूर जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि अब ये समय की मांग हो गई है कि हम एकल परिवार में रहें। तो हम इसी बात पे बातचीत करने वाले हैं कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार, मतलब दोनों का क्या महत्व है, और ये एक परंपरा है हमारे देश की या स्वतंत्रता के रूप में इसको देखा जाता है कि जब एकल परिवार में लोग रह रहे हैं, बच्चे दूर दूर जाके रह रहे हैं, सिर्फ उनका एक एकल परिवार रहता है जिसमें माता पिता पीछे छूट जाते हैं। तो आप अपने विचार इस पे हमें बताइए कि संयुक्त परिवार का क्या महत्व है।
2: जी बिल्कुल रेणु जी, जैसा कि आपने बताया कि हमारी भारतीय परंपरा ही यही रही है कि हम संयुक्त परिवारों को, हम लोगों को जोड़ना सीखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा सबसे बड़ा यहाँ हमारे धरोहर रहा है कि सबको इकट्ठा रखना, सबको साथ लेके चलना है, तो संयुक्त परिवार सबसे पहले उन्हीं की भूमिका निभाते हैं। तो परिवार सिर्फ लोगों का समूह नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और संस्कारों की पहली पाठशाला है। आज के बदलते समय में संयुक्त परिवार और एकल परिवार दोनों ही हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार के अंदर तो पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, इस परिवार में प्रेम, सहयोग, साझेदारी सब की भावना होती है
0: और कितनी निश्चिंता होती है।
2: बिल्कुल,
0: संयुक्त परिवार में रहते हैं तो कितनी निश्चिंता होती है, कोई हड़बड़ी नहीं होती और कोई मतलब चिंता नहीं होती है। माँ बाप अगर बाहर जॉब करने भी जा रहे हैं कोई, तो उनको पता है कि पीछे परिवार है, वो हमारे बच्चों को देख लेगा, या हम वापस आएंगे तो हमें खाना बना बना मिलेगा, मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें।
2: जी जी बिल्कुल, संयुक्त परिवार हमारे लिए, जैसे हम दादा दादी के साथ रहते हैं, हमारे बच्चे उनसे बहुत संस्कार सीखते हैं, जो हमारा पुराना कल्चर है उससे जुड़े रहते हैं, पुरानी रीति रिवाजों से जुड़े रहते हैं। हर इंसान को एक दूसरे का सपोर्ट महसूस होता है, हम एक दूसरे के साथ अच्छा फील करते हैं, हम एक दूसरे के साथ इतना कनेक्टेड फील करते हैं जो हम भारतीय कनेक्टेड फील करना चाहते हैं। तीज त्योहारों के माध्यम से हम लोग एक दूसरे का अकेलापन महसूस नहीं होने देते किसी भी रिश्ते में।
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल, और हमारे बुजुर्गों का जो हम मान सम्मान करते आए हैं, हम उसी तरीके से संयुक्त परिवारों के अंदर उनको रखते हैं और बुजुर्गों का ध्यान रख सकते हैं, उनकी हेल्थ का भी रख सकते हैं, उन्हें बाहर ले जाने का, हर तरीके से संयुक्त परिवार हमारे लिए, हमारे भारत को जोड़ने के लिए, परिवारों को जोड़ने के लिए अच्छा है।
0: हाँ, और ये जो हमारी बातचीत में आ रहा है परंपरा शब्द, तो ये नो डाउट हमारी परंपरा तो है ही है हमारे देश की। अब हम चाहे हम रामायण को देख लें, महाभारत को देख लें, वहाँ से भी अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि कितना बड़ा बड़ा परिवार होता था, है? चलो वो राजा महाराजा थे, परंतु इसी तरह से अब आगे 25-25, 30-30 लोग हैं परिवार के अंदर, संयुक्त परिवार, तो उसमें तो कोई भी आप तीज त्यौहार मना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं पर भी, आप घर में ही। और अभी भी कितने ही परिवार हैं जो कि किसी भी तीज त्यौहार पे, कोई भी इस तरह का शुभ कार्य हो तो सब इकट्ठे होते हैं।
2: जी बिल्कुल,
0: तो ये संयुक्त परिवार का कितना बड़ा एक वरदान है कि हम सब मिलके इकट्ठा सब मना सकते हैं, तो कितना फायदा है इससे।
2: जी बिल्कुल,
0: आप क्या कहेंगे इसके बारे में।
2: जी बिल्कुल, संयुक्त परिवारों का हमारी भारतीय उसके अंदर हमेशा फायदा ही रहा है, हम आगे ही बढ़ना सीखे हैं, हमें जो हौसला, कहीं भी आप बाहर जाओ तो जब तक आपके पास परिवार का पीछे सपोर्ट नहीं है, आप हमेशा एक दिमाग पर एक बर्डन लेकर चलते हैं कि हाँ, हमारा परिवार साथ नहीं है। वहां आगे बढ़ने में जो पीछे सपोर्ट करता है, वो सबसे बड़ा परिवार का सपोर्ट है जो हमें आगे बढ़ने के लिए इतना प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल, और परिवार के अंदर देखिए, अब संयुक्त परिवार में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है, एक तो सबसे बुजुर्ग महिला जो है उसकी होती है ना
2: जी, बिल्कुल।
0: तो वो महिला कौन है? वो माँ के, माँ से फिर आगे आगे होते होते दादी, परदादी के जगह पे पहुंची
2: जी, बिल्कुल।
0: तो वो जो परदादी होते हुए, और एक छोटा बच्चा देखेगा मेरी माँ है, फिर उसके बाद मेरी दादी भी है, फिर मेरी परदादी भी है, तो उसको तो कोई चिंता ही नहीं है, तो कितना अच्छा लगेगा उसको। तो मतलब वो जो यहाँ से जो भावनाएं ले रहा है

0: ये जो संस्कार ले रहा है वो संस्कार देखो उसके लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे।
1: जी, कई बार संयुक्त परिवारों में बच्चे चाचा से, ताऊ से, ताई से इतने जुड़ जाते हैं कि उन्हें बड़ी माँ, बड़े पापा, इन शब्दों का प्रयोग हमारे
0: हाँ
1: समाज के
0: अब
1: अंदर कितना प्रचलित होने लग गया है
0: बिल्कुल
1: कि बड़ी माँ है, बड़ी माँ, माँ शब्द जुड़ गया तो उनके इमोशंस जुड़ गए उनके साथ।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और आज क्योंकि मातृदिवस है तो आप हमारे साथ हैं तो हम आपकी पसंद का कोई गीत बताइए जो हम सुन लेते हैं।
1: जी रेणु जी, मातृ फिल्म का कोई गाना है
0: अच्छा
1: वो,
0: आपको शब्द याद नहीं है, कोई बात
1: जी
0: नहीं हम
1: बोल याद
0: सुनवाते हैं।
1: नहीं है,
0: ठीक
1: आप
0: है
1: उसको।
0: जी सुनवाते हैं अभी।

तो ये भावों से भरा हुआ खूबसूरत गीत हमने माँ की प्रशंसा में जो सुना, सचमुच आंखें भर आई हैं, क्योंकि माँ की महिमा ही अलग।

0: और सचमुच आपका गीत कितना, मतलब इतना अच्छा गीत आपको पसंद
1: जी
0: है
1: रेनो जी, मैंने
0: हाँ
1: देखा आप बिल्कुल इमोशनल हो गई सुनते सुनते।
0: तो अभी हम अपनी बातचीत को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमें अब अलग से हटना नहीं है उससे। तो हम बात कर रहे थे संयुक्त परिवार और एकल परिवार
1: जी।
0: तो अब हम संयुक्त परिवार की तो हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, फिर भी उसका फ़ायदा है नो डाउट, पर अब जब बच्चे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बाहर निकल रहे हैं तो एकल परिवार उनकी कंपल्शन हो गई है आई थिंक। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में?
1: जी बिल्कुल रेनू जी, जैसे आपने कहा कि नीड ऑफ द आर बन चुका है, हमें बहुत ज़रूरत है, कंपल्शन बन चुकी है एकल परिवारों की। एकल परिवारों का प्रचलन इसलिए बढ़ रहा है हमारे समाज में क्योंकि हमें बच्चों को बाहर नौकरी पेशे के लिए जाना पड़ता है, जो यहाँ हैं वहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनके लिए हमें एकल परिवार को वहाँ जाना पड़ रहा है। वहाँ वो अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, वहाँ पर उनको एक नई दुनिया बसानी है, अपना काम शुरू करना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भी मौके देने हैं
0: है,
1: बिल्कुल
0: हाँ।
1: उनके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। उनमें एकल परिवारों में उनके फ़ायदे भी हैं, जैसे उन्हें अपनी फ्रीडम मिल जाती है, अपनी जिम्मेदारियां उन्हें दूसरों के प्रति, बड़ों के प्रति कम महसूस होती हैं, वे अपने डिसीजंस इंडिविजुअली ले पाते हैं, तो खुद को वहाँ ऐसा समझते हैं कि हाँ हम एकल परिवार के रूप में भी उभर सकते हैं यहाँ, क्योंकि दोनों ही समाज के हिस्से हैं, संयुक्त भी और एकल भी। हम नहीं तो एक परिवार को बुरा कह सकते हैं, नहीं एक परिवार को अच्छा कह सकते हैं। जहाँ संयुक्त परिवार की अपनी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ वहाँ उनके लिमिटेशंस भी हैं, इसी तरह अगर हम एकल परिवार को देखें तो कुछ उनकी अच्छाइयाँ हैं और तो कुछ उनकी लिमिटेशंस भी
0: हाँ,
1: हैं।
0: मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि एकल परिवार की अच्छाइयाँ हैं पर उनकी लिमिटेशंस शायद ज़्यादा हैं। ज़्यादा इसलिए कि जैसे नो डाउट स्वतंत्रता है उन्हें अपने हिसाब से, और आजकल स्वतंत्रता को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं बच्चे कि चलो हमारे ऊपर खाने का बंधन नहीं कि पूरे परिवार का बनाना है, जो मर्जी हुआ खा लेंगे। परंतु वो चीज़ें धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। भाई परिवार में इकट्ठा खाना बनेगा तो सबको वही खाना ही खाना है। और फिर दूसरा, अगर आपके छोटे बच्चे हैं आप उनकी पसंद के हिसाब से नहीं मुझे ये नहीं खाना, तो मम्मा कहती है अच्छा मैं ये बना देती हूँ, तो उसके लिए मजबूरी हो जाती है कि प्यार में उसको बनाना भी है और वो थकी हारी आई है तो बनाएगी कैसे। तो वहाँ पर फिर याद आता है संयुक्त परिवार, जहाँ पर कोई दादी होती तो वो कह देती चलो मैं बनाती हूँ
1: जी
0: कोई बात
1: बिल्कुल
0: नहीं है। तो वो एक तरह से स्वतंत्र हैं, एक संयुक्त परिवार में भी स्वतंत्र हैं क्योंकि उनके ऊपर बच्चों की, अपने बच्चों की जिम्मेवारी नहीं है और उनको वो सारी परवरिश मिलेगी जो कि हम भी नहीं दे सकते। तो ये वहाँ पे मेरा थोड़ा सा ये विचार है और आप सब सब डिफर करते हैं नो डाउट इसके
1: जी
0: ऊपर।
1: बिल्कुल, एकल परिवारों के अंदर कुछ हैं जहां बच्चे भी अकेलापन महसूस करते हैं, संयुक्त परिवारों के अंदर बच्चे दादा दादी के साथ, चाचा चाची के साथ घूमते हैं फिरते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं।
0: एक्सपीरियंस उनके ज़्यादा होते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: एक्सपोजर ज़्यादा होता है उनका।
1: जी बिल्कुल, वहीं वो एकल परिवारों के अंदर अकेलापन महसूस करते हैं।
0: हाँ, और
1: वहीं
0: नौ सिर्फ अकेलापन, यहाँ आप क्या कहेंगे, जैसे हम कई बार हम देखते हैं कोई बच्चा बोलना बहुत लेट स्टेज में शुरू करता है, क्यों? क्योंकि जो वो वहाँ ज़्यादातर केसेस रहते हैं जहाँ पे कि एकल परिवार,
1: एकल परिवार
0: क्योंकि माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है बात करने का उसके
1: जी।
0: साथ। और जब वो संयुक्त परिवार में रहेगा तो वो हर कोई उससे बात कर रहा है, हर किसी को वो बोलता हुआ सुन रहा है, तो वो अपने आप ही शब्द वो अपनाने लगता है शब्दों को।
2: बिल्कुल, बच्चों की जो हम कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास में जो
0: हाँ।
2: है संयुक्त परिवार की जो एक बहुत बड़ी जो भूमिका रही है और आगे भी जो है वो रहेगी
0: जी। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो स्वतंत्रता कम और बल्कि उसका नुकसान ज़्यादा है
1: जी बिल्कुल। जैसे आज हम मातृ दिवस मना रहे हैं तो वहीं कुछ माताएं नौकरी पेशे के लिए चली जाती हैं, पीछे बच्चों को संभालना दोनों पेरेंट्स के लिए, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके
0: हाँ।
1: लिए बच्चों को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। वहाँ पेरेंट्स के भी दिमाग पर एक प्रेशर रहता है, बच्चे अकेले हैं घर पर, बच्चे अकेले, तो वो जो एक पीछे उनके मन में डर है अपने बच्चों को लेके, वो कुछ ना कुछ बच्चों के अंदर भी आ रहा है,
0: आ जाता है इनसिक्योरिटी आ जाती है
1: जी बिल्कुल।
2: पर दीक्षा, क्या जो स्वतंत्रता है वो एकल परिवार में ही संभव है? क्या हम संयुक्त परिवार में रहकर स्वतंत्र नहीं रह सकते?
1: जी बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन जवाब में यही है कि बिल्कुल पॉसिबल है।
0: कैसे हो सकता है ये? थोड़ा हमें अब वेज आउट तो ढूंढने ही पड़ेंगे।
1: जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार तो एक रिश्तों का समूह है, रिश्तों के अंदर मिठास है तभी परिवार कामयाब है, चाहे वो एकल है चाहे वो संयुक्त है। यदि रिश्तों में मनमुटाव है तो ना तो वो संयुक्त परिवार चल पाएगा ज़्यादा दिन, ना वो एकल परिवार चल पाएगा ज़्यादा दिन।
0: बिल्कुल,
1: हमें दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि दोनों का एक हम बैलेंस क्रिएट कर पाएं कि हम दोनों तरफ से इस तरह चलें कि हमें वहाँ जिम्मेदारियाँ भी महसूस हों और अच्छा भी लगे और रिश्तों का जो ताना बाना है हमारे समाज का वो बना रहे।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो। और एक मैं थोड़ा पर्सनल बीच में होती हूँ, मैं आई कैन सी कि आप वुड बी मदर हो थोड़ा सा, अभी यू आर इन अ फैमिली वे।
1: जी
0: तो आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं एकल परिवार में?
1: जी मैं अपने ही माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि मैं आधुनिक संयुक्त परिवार के अंदर रह रही हूँ।
0: वो कैसे?
1: जी बिल्कुल, हम जैसे रहते हैं तो मेरे घर में भी जो मेरे हस्बैंड हैं उनके भी ब्रदर हैं और वो ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं, मेरे सास ससुर, और हम साथ भी हैं और हम अलग भी हैं।
2: फ्लोर वाइज आप रहते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम फ्लोर वाइज रहते हैं। और जब जेठानी जी, उनका ऐसा होता है कि मम्मी पापा ठीक हो, उनके स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, वो समटाइम्स चाची चाची हम आपके पास ही रुकेंगे, हम आपके पास खाना खाएंगे, हम आपके पास रहेंगे, तो एक
0: बहुत अच्छा एहसास रहता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी जेठानी जी का मन हो तो वो फोन कर देती हैं, आ जाओ साथ बैठकर एक चाय पीते हैं। हाँ, बालकनी
0: हाँ,
1: में
0: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये तो। ये एक सॉल्यूशन भी है।
1: जी बिल्कुल,
0: संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बीच का जो है ना वो बहुत अच्छी बात
2: जी बिल्कुल। और इस तरह हम जो अपनी परंपरा और स्वतंत्रता दोनों में जो है संतुलन भी बना सकते हैं
0: और एंजॉय भी कर सकते हैं,
2: एंजॉय भी कर सकते हैं
0: जी। और उसमें हमारे बुजुर्गों का, जो बड़े बुजुर्ग है उनका भी ख्याल रखा जाएगा और जो छोटे वाली पीढ़ी है वो उसका बड़े बुजुर्ग ख्याल रख पाएंगे।
1: जी बिल्कुल, और वही बात है, रिश्तों में मन भेद नहीं होना चाहिए, चूल्हा चाहे बट जाए घर नहीं बटना चाहिए,
2: दिल नहीं बटने चाहिए।
1: जी बिल्कुल
0: बिल्कुल, ये तो आपसे बहुत ही अच्छी बातचीत रही और हम चाह रहे हैं कि हम इसी विषय पे और बातचीत करते रहें करते रहें, परंतु आप बस अब हम इसको बातों तो कंक्लूड करना चाहेंगे, पर हम एक संदेश चाहेंगे कि हमारी बहनें क्या आपसे इंस्पिरेशन लें।
1: यही है कि किसी भी परिवार में रहो, संयुक्त में रहो, एकल में रहो, रिश्तों के अंदर मिठास बनाए रखो। हाँ। और जो आधुनिक संयुक्त परिवार हैं एक बार इनकी तरफ अगर नज़र डाल ली जाए तो क्या बुराई है।
0: नहीं बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश है और हमारी बहनें ज़रूर इस बात पे अमल करेंगी। और जो हमारे अब समाज में जो एक विघटन हो रहा है उस पर हम थोड़ा रोक लगाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि आखिरकार में तो होता कौन है, किसके हाथ में सारी चीज़ें होती है? माँ के हाथ में।
1: जी
0: तो माँ अगर चाहे तो वो संयुक्त परिवार को बनाए रख सकती है, और अगर वो चाहे कि नहीं मुझे नहीं रहना ये बड़ी माँ के साथ, मुझे लग रहा तो वो उसका विघटन भी कर सकती है।
1: जी
0: पर हम यही विश करेंगे कि हर महिला चाहे कि संयुक्त परिवार में रहे ताकि हमारे देश की परंपरा बनी रहे।
1: जी बिल्कुल।
0: और तो अब हम आगे भी तो बातचीत करनी है हमें, बहुत सारी हमारे
2: विषय हैं रेनू। और जो आने वाले 16 मई को हम सब जो हैं वो सिक्किम दिवस है वो भी मनाने जा रहे हैं, और सिक्किम का नाम लेते ही तो आंखों के सामने कंचनजंगा की वो बर्फ से ढकी हुई चोटियां, मुस्कुराते हुए चेहरे और शुद्ध हवा आती है।
0: सिक्किम जो है 1975 में एग्जिस्टेंस में आया ना।
2: जी 16 मई 1975 को। जी और सिक्किम सिर्फ एक सुंदर ही नहीं बल्कि समझदार जो है वो भी है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे पहला जो कहेंगे हम 100% जो है ऑर्गेनिक राज्य है जो है सिक्किम है।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। और फिर परस्पर शांति, हम बहुत सारी बातें हमने की हैं अभी, तो परस्पर शांति से रहने के का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हम 16 मई को मनाते हैं, तो वो यही है कि सब मिलजुल कर रहें, तो इसके लिए यूएनओ ने इसकी शुरुआत की और 16 मई से इसको मनाया जाने, 16 मई 1917 से इसको मनाया जा रहा है, तो ये तब से ये शुरुआत चल रही है।
2: और इसी के साथ ही 16 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है वो भी मनाने जा रहे हैं।
0: अरे प्रकाश दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है?
2: यह खास दिन हर साल जो है 16 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में प्रकाश के महत्व को रेखांकित करना है। आज के ही दिन 16 मई को 1960 में पहली बार जो है लेजर का जो है सफल परीक्षण हुआ था, और प्रकाश सिर्फ अंधेरा ही नहीं मिटाता बल्कि यह विज्ञान और विकास का आधार भी है।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए हम प्रकाश, और हम प्रकाश दिवस एक अलग भी होता है जो हमारे सिख समुदाय के लोग मनाते, पर उससे इसका कोई संबंध नहीं है।
2: इसलिए हमें बिजली बचाने और ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए, लाइट जो है पोल्यूशन है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि बिना रोशनी के फोटोग्राफी, सिनेमा और कला की भी जो है हम कल्पना नहीं कर सकते। इसी के साथ ही चिकित्सा में जो है लेजर तकनीक है जो
0: अच्छा, जो आजकल जो अब चल
2: जी बिल्कुल हाँ, जो जिससे है हम लाखों लोगों की जान बचाते हैं, और जो आज का जो तेज इंटरनेट भी जो है ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाश की ही देन है। इसलिए जो है प्रकाश है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जिससे जो है पूरी धरती का जो है इकोसिस्टम चलता है। तो इसलिए हमें ज्ञान के प्रकाश को जो है समाज में फैले जो है अंधेरे

0: को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तकनीकी का सही इस्तेमाल ही हमारे भविष्य को जो है वो उज्जवल बना सकता है।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और परस्पर शांति के लिए ये बहुत संभव है ही है, ज़रूरी है। सारी चीज़ बातें आखिर में आके टिक जाती है कि किस तरह से शांति स्थापित करने के लिए कुछ भी किया जाए, तो वो चाहे हम प्रकाश दिवस मनाएं, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाएं, या तो सारी बातें मिलजुल कर एक ही बात की तरफ संकेत करते हैं कि हमें प्यार से मिलजुल कर रहना है। और हमारी बहनों को इंतज़ार है कि हम कुछ बताएं आगे, कोई रसोई की बात बताएं, पर अभी हम समय है नहीं है हमारे पास, हम उनसे अब ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो हम उनसे विदा लेना चाहेंगे। और माँ का जो महत्व है उसको हम फिर से याद दिलाना चाहेंगे बहनों को, मदर्स डे से रिलेटेड ये एक गीत, हम थोड़ा सा लाइन हम उनको सुनाते गुनगुनाते हुए हम उनसे नमस्कार करना
0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: जी नमस्कार।

0: बहनों ने सुना अपना कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजा है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का समय है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी

0: की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, अब आप सुनेंगे आपके अनुरोध पर कार्यक्रम।

हमारे सभी सुनने वालों को अर्चना मिश्र का नमस्कार। महीने का दूसरा रविवार है आज और महीने के दूसरे रविवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं ईमेल आधारित आपके अनुरोध पर कार्यक्रम। हमारे सभी सुनने वालों का हम अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपको बता देते हैं अपनी ईमेल आईडी रोहतक रेडियो ROHTIK रोहतक रेडियो @gmail.com। फिलहाल जो मेल हमारी स्क्रीन पर है वो है भाना ब्रह्मनान नरवाणा के मेघराज शर्मा, गौरव, सौरव, विजय, अजय, जितेंद्र और जोगेंद्र शर्मा की भेजी हुई। आप सभी मिलकर सुनना चाहते हैं ठोकर फिल्म का गीत, मैं ढूंढता हूँ जिनको ख्वाबों में ख्यालों में। पूरा गीत सुनिए।

गीत आपने सुना ठोकर फिल्म से, मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के। और अब अगली मेल जो हमारे सामने है वो है हमारे जबलपुर मध्य प्रदेश के श्रोता हैं अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता, प्रीति, ऋतु, संकल्प, ऋषिव और वेदा सिंह। इन सब का अनुरोध है कि धर्मवीर फिल्म का गीत इनको सुनवाया जाए, सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। तो आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं।

अगली मेल हम शामिल कर रहे हैं मेरठ कैंट के हमारे श्रोता हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। आप सुनना चाहते हैं अल हिलाल फिल्म का गीत, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: پڑے کسی کبھی پالا نہ حسن والوں سے ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے.
1: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं आपके अनुरोध पर कार्यक्रम. आज का आपके अनुरोध पर कार्यक्रम आधारित है ईमेल्स पर. अपने नए श्रोताओं के लिए ईमेल आईडी बता देते हैं, रोहतक रेडियो ROHTAKRADIO रोहतक रेडियो @gmail.com. अगली मेल हमारी स्क्रीन पर है. बड़वाह के हमारे सुनने वाले हैं खरगोन से, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली. आप सुनना चाहते हैं आशा फिल्म का गीत शीशा हो या दिल टूट जाता है. और कोई भी गीत सुनवाने के लिए हमें मेल भेजी है धनोरी तेलीवाला के निसार सलमानी, नौशाद आलिया, आयान बाबू ने, और वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र के विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्वनी चौहान, माई इंदुरकर, शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान ने. तो आप सभी के लिए शीशा फिल्म का ये गीत, माफ़ कीजिएगा, आशा फिल्म का गीत शीशा हो या दिल टूट जाता है.

अगली मेल हमें भेजी है गांव शेरड़ा हनुमानगढ़ राजस्थान से मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा और लीलाधर शर्मा ने। संजोग फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं, यशोदा का नंदलाला। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं। हमारे सभी सुनने वालों को आज मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं ये गीत।

ये था संजोग फिल्म का गीत, और अगला गीत भी माँ को समर्पित है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने राजा और रंक फिल्म का गीत तू कितनी अच्छी है माँ सुनवाने के लिए हमें मेल्स भेजी हैं। आप हैं अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर।

सदानंद, गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी, निमित आहूजा, इन्होंने भी माँ के लिए गीत सुनना चाहा है। और हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी की मेल आई है। राजा और रंक फिल्म का यही गीत सुनवाने के लिए भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा, दीपक, अनुश्री श्याम कुंवर की मेल हमें मिली है। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला, विशाल नाहवकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहर्रेकर की मेल। और अगली मेल हम शामिल कर रहे हैं हनुमानगढ़ के रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जीशान खान की। और जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खट्टक, बिमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खट्टक की मेल इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें मिली है। कोई भी गीत सुनवाने के लिए इंदौर से देविका चौधरी, स्वाति चौधरी, प्रज्ञा मालती, ललित नारायण भाऊ, रक्षाताई खड़से, इनकी मेल हमें मिली है। और पोफाली यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार, अर्पिता, चौधरीवास के राजू अग्रवाल, केशव विवेक प्रयाग और प्रियांशी कोई भी गीत सुनवाने के लिए मेल भेज रहे हैं। और एक मेल और फ्लैश हो रही है कोई भी गीत सुनवाने के लिए, देखते हैं ये कौन है। आप हैं वंडिंग खेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप सभी के लिए राजा और रंक फिल्म का गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ सुनवा रहे हैं।

ये था राजा और रंक फिल्म का गीत। अगला गीत हमारे भिवानी के जितेंद्र खेड़ा की मेल पर आधारित है। लैला मजनू फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, झोलियां भर गईं कोई खाली न गया। और इसी फिल्म का एक जुदा गीत सुनने के लिए निम्नाबाद के जसबीर अरोड़ा, जितेंद्र गुरप्रीत लवप्रीत और कर्मजीत कौर की मेल भी हमें मिली है। तो आप दोनों के लिए ये गीत सुनवा रहे हैं।

आपके अनुरोध पर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगली मेल हम शामिल कर रहे हैं डेर पाटन गुजरात के, हमारे सुनने वाले हैं धीरज बी रब्बारी। ये सुनना चाहते हैं कभी कभी फिल्म का शीर्षक गीत, तो आपके लिए ये गीत प्ले कर रहे हैं।

ये था कभी कभी फिल्म का गीत, हमारे गुजरात के सुनने वाले हैं उनकी पसंद पर। और अब उन श्रोताओं के नाम आपको बताना चाहेंगे जिनकी ईमेल हमें मिली हैं लेकिन उनकी पसंद के गीत हम उन तक नहीं पहुंचा पाए। आप हैं फ्रांसी के राजकुमार डूडी, प्रमोद पुष्पेंद्र डूडी, नारायणपुर से कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांचल राय, जींद से सुरेश मल्होत्रा, अमित मल्होत्रा, दर्शना, सौम्या, जयविश और जय मल्होत्रा, कुरजक से हमारे सुनने वाले हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन, अंकुश अरोड़ा। और अगली मेल है चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे की। नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह। इंदौर के हमारे सुनने वाले हैं गणेश खर्चे, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग, देविका चौधरी। और चूरू राजस्थान से हमारे श्रोता हैं संदीप सिंह सोनकरा, प्राची, सोनल या सोमल, कार्तिक और समस्त सोनकरा परिवार। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, प्रतिभा शर्मा, ईशप्रीत शर्मा, नरेंद्र तनेजा। पांडुपिंडारा से बादल सिंह गिल, कमलेश, टीनू, नीरू, प्रीति, डॉक्टर अंकित और डॉक्टर वानिका गिल। डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग। नथाना की हैं हरजिंदर छिंदा, जसबीर जस्सी, सीता और गीता। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर। कैथल से डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज।

कैथल से जयवीर सिंह ठाकुर हैं, अनिल शर्मा आपके साथ हैं। पदमपुर श्री गंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा की मेल है। लोहारू से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी सुरेंद्र की मेल हमें मिली। और आप हैं मालियान सरघना से अनिल जैन, संयम मुस्कान, जिव्यम सरघना मेरठ से आदि जैन, अंश भव्य जैन। अगली मेल हम शामिल कर रहे हैं गिरिडीह झारखंड के हमारे सुनने वाले हैं मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद मिफ्रा और चाहत हैं इनके साथ। मोहला से राजकुमार ढोचक, गीता अमन, सानिया सुभाष, उषा राहुल, रोहित जोगेंद्र, दर्शना इंदु और यक्षित। टोरोवाल से गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका, प्रशांत प्रियम, वामिका वाणी थांदी। भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। पोटिया कलार दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू। और खरगोन के हैं हमारे सुनने वाले अशोक वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना। खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आप सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इतनी भारी संख्या में ईमेल हमें अपने इस कार्यक्रम के लिए मिली हैं। और जो श्रोता अपनी ईमेल भेज चुके हैं लेकिन हमारे सामने जो हमारी स्क्रीन है उस पर हमें फ़िलहाल फ्लैश होती दिखाई नहीं देती हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ आज का आपके अनुरोध पर कार्यक्रम यहीं समेटने की अर्चना मिश्र आपसे इजाज़त चाहती है।

आपने सुना आपके अनुरोध पर कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से 2 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले अंग्रेजी में, इसके बाद हिंदी में, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with nine ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी

0: The host team Rajasthan got bundled out for just 152 runs in the 17th over. India Meteorological Department has forecast heatwave conditions over Gujarat and Rajasthan till tomorrow. Warm night conditions are likely to persist in places over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. IMD further predicted a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart, and lungs. Lupus has no known cure and often put a devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्वा सरमा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் 9 மந்திரியும் நே பி சபத் லீ ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
4: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
5: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान

0: संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभासपाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा भी की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने 1 दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी वेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
1: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला MV होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडा

0: मनीला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनेरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान।

0: अपने घर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: कार्यक्रम सुननिया सारे बण भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। किसान भाइयों, इब हमने अपने गेहूँ की फसल का निपटारा कराया, महीना भर हो गया, लगभग सारा काम तो हम निपट लिया। कुछ भाई थोड़ा सा पछेत में चले गए थे, कुछ अनगेता काम निपटा दिया था, उसके बाद कुछ काम रह जाया करे कि जो तूड़ा बनाने का है। भाई ने तूड़ा भी टाइम पे बना लिया, फिर एक बाढ़ सीन देख रहे थे, हल्की फुल्की कोई बारिश हो जा या फिर इस तरह की बारिश हो जाए कि ज़मीन का बाण का काम चल जाए, या फिर कुछ थोड़ा बहुत कोई बुआरा करना है उसका भी काम चल जाए। तो चलो, बारिश भी बाद में हुई है, उतनी ज़्यादा तो नहीं हुई, दो तीन दिन तक लगातार देखने में आया है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी सी हो गई है, मौसम भी कुछ ठंडा होया। और फिर देखें तो ई बाल के बात करा तो धूप भी ठीक अच्छी तेज निकल है। एक सलाह दी जा कर इस मौके पर कि भाई जमीन की बाई है जो वो इस तरीके से करी जा कि मिट्टी की अल्टा पलटी हो जा। अल्टा पलटी हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, मोटे मोटे डले पाट जाएंगे, नीचे हवा चली जाएगी, हवा का संचार हो जाएगा, आवागमन हवा का बनेगा, और जब कोई सूत्रकर्मी वगैरह कोई इस तरह के कोई जीव है नीचे तो उन तभी छुटकारा मिल जाएगा। सूत्रकर्मी का जिक्र आया है, भाई ने कई बार बातचीत भी सुनवा ली इस बारे में। सूत्रकर्मी क्यों हैं कि जमीन में रह के और फसल की जड़ा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उनकी खातर कोई घनी सी कोई दवाई सी नहीं बनी कि दवाई का छिड़काव कर दें तो फिर वो मर जा ना। वह तो जो मौसम का हिसाब से ना, उसके हिसाब से तो वो काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से उनका निपटारा हुआ है। तेज धूप पड़े है, वो जमीन के अंदर मर जा हैं, और कुछ तो इसे सूत्रकर्मी है जो मोल्या सूत्रकर्मी का नाम आया है, वो गेहूं की फसल में नुकसान करके अगले साल गेहूं की फसल में इन फेर नुकसान करेगा, बीच में कोई चारे की फसल बो दी, कोई और फसल बो दी, उसमें वो नुकसान भी नहीं करेगा। तो कुछ ईसे डाल का वो है कि वह पूरे साल तक भाई इशारा है कि अपना जमीन के मह चुपचाप रह जा है, और उसके बाद भाई देखें तो इस मौके पाकर बहुत ज़्यादा वो नुकसान करते हैं। तो एक तो सलाह दी जा है कि भाई गहरी जुताई कर लें इस टाइम पे, बाकी और जो अपने काम हैं साथ में, भाई कितने पशुधन की संभाल है, कितने अगली फसल की खातर है, भाई धान की खातर है, कितने नर्सरी तैयार करनी है, उसका बीज लेना है, खेत की बायस हमारी करनी है, गोबर की खाद भी इस मौके पर भाई गिर सके हैं। लेकिन एक सलाह ज़रूर देंगे कि गोबर की खाद गिरते ही तुरंत उसने मिट्टी में मिलाने की कोशिश करें, अगर वो कई दिन पड़ी रह जाएगी तो वो गोबर सूख जाएगा, और सूखने के बाद फिर वो अपना पूरा काम नहीं कर पाओगा। जो कर कच्चा गोबर काम नहीं करता तो सूखी हुई खाद भी इतना बढ़िया काम नहीं करती, वो हल्का फुल्का सा जो गीला है उससे टाइम पर उसने ज़मीन में मिला दें, बाद दें, वो ज़मीन के साथ मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा, फिर खेत ने एक सा पहले कर लें, जो हम गोबर की खाद गिरे ना उससे पहले खेत ने समतल कर लें। समतल करना बहुत ज़रूरी हुआ है, जितना के किसान भाइयों इसमें समतल करने में खर्चा हुआ है ना, इतनी तो आमदनी कुछ बढ़े जा है, वह न्यू बढ़ जा है कि भाई हम पानी दे हैं, ऊंचा नीचा खेत होगा, ठोक कर पानी देना पड़ेगा, कितने तेल भी ज़्यादा लग सके, चलो भाइयों के बिजली के ट्यूबवेल हैं तो फिर कैण मैया भी बात आओ है कि भाई इतने घने बढ़िया से अपने प्रदेश के पानी भी ना है जो ज़मीन के हैं, घना पानी देना भी नुकसानदायक होगा। तो उसमें खेत जब समतल होगा ना तो हम एक इंच दो इंच जितना भी हम पानी देना चाहें हैं तो वो पानी ठीक डाल दिया जा सके है, साफ सुथरा अपना खेत हो जा, उसके बाद फिर अगली फसल जब हम बोआ हाँ तो वो बढ़िया डाल हो सके है। हरी खाद का भी जिक्र आया है गोबर की खाद के साथ है, उसका भी प्रयोग भाई करे हैं कि बहुत सारे भाई अपनी हरी खाद बना लें, चाहे मूंग है नेचा है, मुख्य रूप तत्व यही हैं, पहले सनी की भी बनाया करते लेकिन ये प्रचलन आहिस्ता आहिस्ता दिखल लाग रहे हैं, कम होता जा रहा है, ये मूंग की तरफ है या नेचे की तरफ जाओ है, सरकार भी इसका बीज दे दिया करो, वो भाइयों ने उपलब्ध हो गया होगा मौके मौके की बात से, और ना तो वो भाइयों तरफ बीज है या ल्या के अपना ढांचा इस तरीके से बोले, थोड़ा सा बीज फालतू डालना पड़ा करे, उन्नी डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने ढांचे के कोई लकड़ी वो डंडे कोई बीज खातर वो तो नहीं बना रखा। ज़्यादा बीज होगा तो वो जमा हुआ अच्छा नज़दीक नज़दीक ले लेगा, और जैसे ही फिर मौका होगा तो उस टाइम पे उसका कटाई का काम चल जाएगा और वो मिला दिया जाएगा। और मिलाने का भी तरीका ये है कि जैसे खेत बा दिया, बांधें, फिर उसमें पानी देना पड़ेगा। पानी नहीं देंगे तो जो वो डंठल से हल्के फुल्के वो रह जाएंगे, उसकी जो जड़ ऊपर आई हैं वो रह जाएंगी, वो गड़ानी जरूरी है। और जैसे ही वो गल जाएगा और गलने के बाद फिर हम देखेंगे कि अगली फसल जब हम बोआ है ना तो उसका न्यारे रंग होगा। तो ये कुछ बात अगली फसल खातिर थी। फिर आज आपकी ना बता दें, आज अपनी चर्चा रखेंगे बागों में करने वाले कृषि कार्य। बागों में करने वाले कृषि कार्य तो ये हैं कि पहला काम बाग साफ सुथरा होना चाहिए, खरपतवार नहीं होने चाहिए बाग में। जब बाग में खरपतवार हैं तो क्या बनेगा भाई, वो जितना निश्चित हैं कुछ पोषक तत्व लेंगे, वो जो मुख्य हमारे पौधे हैं उनकी कटौती करेंगे। साफ सुथरा जब खेत होगा, बाग साफ सुथरा होगा तो दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। कुछ और हैं बात ध्यान में रखने की भाई, कुछ इस तरह का काम कर लें या फिर भाई कोई और अतिरिक्त इस तरह काम करना है जेकर वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मनोरंजन हो जाए कुछ गायक कलाकार नरेंद्र डिगलिया उनके साथी।

निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।

नरेंद्र डी गलिया और उनके साथियों की गाई और बाइया ने रागनी सुन ली। रागनी और भी सुनागे इन्हें की आवाज में, लेकिन रागनी तो पहले जिक्र करा था भाई बागा मकान वाले कृषि कार्य इस महीने के कौन से हो सके हैं। मई का जून का महीना, इसमें भीषण गर्मी पड़े है, तापमान बहुत ऊपर चला जा है, उसने ध्यान में रखते हुए कुछ काम हमने ईद से करने हैं कि इस टाइम पे पौधा को सूखण से बचाना है और फलों की गुणवत्ता बनी रह जाए या कोशिश हमने करनी है। तो उसकी खातिर एक तो नियमित सिंचाई, किसान भाइयों इस बात का ध्यान रखो कि नियमित सिंचाई होनी चाहिए। जो कर मान लें नींबू का बाग है, मौसमी का है, किन्नू का है, इन मतलब 5-6 दिन में पानी की जरूरत पड़ जाएगी। और कई बाग हैं जो कर आम का है, अमरूद का है, इनमें 12-14 दिन 15 दिन तक निकल जाए हैं, लेकिन ध्यान हमने यो ही रखना है कि पानी की कमी बाग में ना रह जाए, पहला तो यो ही काम है। दूसरा मल्चिंग की जरूरत पड़े है, मिट्टी में नमी बनाई रखने खातर तने के चारों तरफ सूखी घास गेर दें या फिर हमने गन्ने की छुलाई करी होगी उसकी पत्ती होगी वह भी हम गेर सके हैं ताकि पानी हम देवा तो वो जल्दी सी ना उड़े। धूप जब लग गए है तो पानी उड़ जाए और ऊपर कोई मल्चिंग रखी है पत्ती पड़ी है तो वो नहीं इतना जल्दी पानी धूप में उड़ेगा, नमी ज़्यादा देर तक बनी रह जाएगी और बढ़िया फल उसमें रहेंगे और अपना बाग ठीक ठाक चल रहेगा। और जो फल गिरने की समस्या है उसमें नेप्थलीन एसिटिक एसिड दवा है, इसका छिड़काव हम कर दें। हाँ, ज़्यादा गर्मी के कारण फल जो गिरे हैं उनमें बचाव बहुत सारा रह जाए। निराई गुड़ाई की बात करा तो बाग में जो मिट्टी है उसमें नमी भी बनाई रखने खातर हल्की निराई गुड़ाई करनी है। खरपतवार निकाल दें, खरपतवार निकालने क्यों जरूरी है, क्योंकि जो पोषक तत्व जो हमारे पौधे चाहिए ना वो खरपतवार ले ले हैं। हल्की निराई गुड़ाई की जरूरत पड़ेगी, न्यूनी कोई गहरी खुदाई करनी है इस तरह की नहीं करनी है। और नर्सरी की जब बात आवे है तो पौधे में कि नर्सरी की तो बना रखी है बाग में तो उसकी भी नियमित सिंचाई करनी है और नर्सरी की छाया की व्यवस्था हमने जरूर करनी है। कई बार कीट और कोई रोग आ जाए, इस मौके की बात करें तो नींबू में फल फटन की समस्या आ जाए है तो बोरान का छिड़काव उसमें कर सका। हाँ, बाग माराम का है तो मंजर के बाद जो छोटे छोटे फल बने हैं उसकी खातर जो कीटनाशक का प्रयोग है, कई बार बातचीत सुनवा हाँ भाई आम के बागों की देखभाल तो वो ध्यान में दुआ दिए जहाँ भैया का चौपाल में बैठे हैं जब भी ध्यान दुआ हैं तो विस्तार से भी नहीं बता पाऊंगे, समय कम रहा है इस टाइम पर तो वो बता दे रहा हूँ, उनका ध्यान करें। लेकिन मुख्य बात तो ये है करण की, एक तो बाग की साफ सफाई हो, कोई अवशेष किसी चीज़ गिरना पड़े हो, कोई डंडी टूटी टाटी ना पड़ी हो, उसमें कोई पत्ते गिर रहे हो वो नहीं होने चाहिए।

बाग साफ सुथरा हो जा। हाँ, मल्चिंग का टाइम पर घास फूस ला कर फिर जब हम पानी दें वहाँ, तो उसके नीचे नमी ठीक ठाक बनी रह जा है। और मुख्य बात आई थी शुरुआत में, कहा था कि सिंचाई करनी बहुत ज़रूरी है। सिंचाई देखो 5-6 दिन का अंतराल जो नींबू वर्गीय थे उनमें तो देखो करनी ही पड़ेगी, 5 से 6 दिन में जल्दी वो पानी सूख जाए। लेकिन अमरूद का आम का बाग है तो और 10-12-14 दिन, 15 दिन तो भी हम मान लिया, लेकिन 10-12 दिन में पानी दे दें। फिर दूसरा हमने जो देखना है, हमारा पानी किसा है, हमारी ज़मीन किसी है, खेत किस हिसाब का है, छाया किस हिसाब की हो रही है। मान लो बाग की छाया ज़्यादा हो रही है तो 2 दिन पाछे भी सिंचाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जनू लग है कि भाई बाग छोटा ही और तेज़ धूप पड़ लग रही है, इतने तेज़ धूप पड़ेगी किसान भाइयों, इतनी इस बात का हमें ध्यान करना पड़ेगा। आगे जाकर तो बारिश शुरू हो जाएंगी, फिर घनी सी दिक्कत नहीं रहेगी, फिर तो उसमें जो भी घास फूस है, खरपतवार है, वो जमा लेगा, वो हमने काटना है। लेकिन ईब तो हमने ध्यान इस बात का जरूर रखना पड़ेगा कि पानी की कमी ना रह जाए। जब कमी रहेगी तो पौधे कमज़ोर हो जाएंगे, जो फल लाग रहे हैं वो भी गिरने लग जाएंगे। नाली बना के पानी दें भाई, अच्छा तरीका है। खेत ने सीधा भरने की जरूरत नहीं होया करती, मान लो बाग है, न्यू नहीं है कि भाई जो दूसरी फसलों के हिसाब से जो क्रम भरया करते न्यू बराना, उसकी ज़रूरत नहीं है। बाग में हल्का सा पानी इस तरीके से जाया कर ताकि थोड़ा पानी में जरूरत, थोड़े पानी में काम चल जाए। नाली बना दिया अगर पौधे का तने के आसपास, और तने का नज़दीक वो पानी जब जाओगा तो वो नमी ने सोख लेगा और उससे तो काम चल जाएगा। फिर जब बड़ा पौधा हो जाए, बड़ा पौधा तो जमीन में तो अपने पोषक तत्व वो सारे वो लेने शुरू कर दे है, उसमें तो कोई मौका ही हुआ पानी देने का उस टाइम पे दिया जाए, बाकी बारिश हो जाए उस तक काम चल जाए। लेकिन एक बात है अपने किसान भाइयों ने जरूर कहना चाहेंगे कि पानी जो बाग में दिया जाए वो बढ़िया गुणवत्ता का होना चाहिए, जो हमारे ट्यूबवेल हैं, जो जमीन का जो पानी है वो इतना बढ़िया नहीं होता। कोशिश करें नहर का पानी या फिर जिस ट्यूबवेल का पानी बढ़िया हो, क्योंकि ज़्यादा पानी की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जिसा के हल्का फुल्का हमने पानी काटना है नालिया में गए, वो साफ सुथरा बढ़िया मीठा पानी उसमें निकल जाए तो बढ़वार उसकी चाल जाएगी। चलो टाइम रह गया तो बात कुछ और भी करेंगे, लेकिन जकरा थे कराग्नि का गायक कलाकार एक बार फिर नरेंद्र डिगलियार उनके साथी।

जो धर्म कर्म की हिन्ना जाने वो अदम बच्चा हाल लटके से चंद करण इस बाबा ते मेरा अब बोलन।

0: भजन रागनी सुने गायक कलाकार थे नरेंद्र डिगलिया और उनके साथी, और जिक्र कर रहे थे वे बागम करने वाले कृषि कार्य है। मुख्य बात आई है कि साफ सफाई करी जा और पानी दिया जा, और पानी भी बढ़िया गुणवत्ता का पानी, ट्यूबवेल का पानी कमज़ोर है तो वो देने की कोशिश ना करें, वो फिर बाकी टाइम पर चल जाएगा, लेकिन इस टाइम पर पानी थोड़ा सा नहर का कोशिश करें या किसी भाई द्वारा ट्यूबवेल का बढ़िया पानी है वो कोशिश करें। नहर का अपना पानी नहीं है, किसी और पर द्वारा सुधारा ले लें, थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ेगी वो उसमें पानी निकल जा, बढ़िया हमारा बाग रहो है। और साफ सफाई बाग में पूरे साल रहनी बहुत ज़रूरी है, और कई बाग ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा थम्बास हो जाए, जो करे अमरूद काम का है उनमें थोड़ा सा रुक भी जाओ पानी खातर, लेकिन नींबू वर्गीय जो बाग हैं, भाई मल्टा है किन्नू है, इस तरह के जो बाग हैं उनमें पानी जल्दी जल्दी देना ही पड़ेगा। वो तो अपना दिन निराई गुडाई करें, निराई गुडाई हल्की करें, ज़्यादा ना करें। मल्चिंग की बात आई थी तो अपना घास भूसा चाहे फिर ईंख की जो पत्ती है वो डालकर और उसके नीचे पानी दें, ताकि ज़्यादा कोई घास फूस भी उसमें ना उगेंगे और साफ सुथरा फिर हमारा बाग चलता रहेगा। तो ईब घड़ी का सारा कार्यक्रम समय समाप्त होया। दलजीत भाई ने इजाजत दें, सारे बहन भाइयों ने राम राम।
1: आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 और 15 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की शाम की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। प्रस्तुत है युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे मेरे सभी साथियों को आपके साथी विशाल का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम बात करेंगे आसिफ अली जयंती के बारे में। आसिफ अली जयंती भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध वकील तथा देशभक्त नेता आसिफ अली की स्मृति में मनाया जाता है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी के आज़ाद करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे एक बुद्धिमान और सच्चे देशभक्त थे। उनका जीवन हमें देश सेवा, ईमानदारी और संघर्ष का संदेश देता है। आसिफ अली का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ। उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और वकालत के क्षेत्र में अपना नाम कमाया। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर देश की सेवा में लग गए। उन्होंने कई आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमें आसिफ अली के आदर्शों को अपनाकर देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साथियों, आज है रविवार का दिन और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत। आज की जो पहली फरमाइश है वो है बेरड़ी से हुकम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची, तन्नु। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी। दुबिया निवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी, प्रांजल। इन्होंने गीत सुनना चाहा है फिल्म रॉकस्टार से। गाया है मोहित चौहान ने, संगीत दिया है ए आर रहमान ने, लिखा है इरशाद कामिल ने। आइए साथियों सुनते हैं गीत।

साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म रॉकस्टार से। गाया था मोहित चौहान ने, संगीत दिया था ए आर रहमान ने, लिखा था इशाद कामिल ने। साथियों, इसी के साथ जो आज की अगली फरमाइश है वो आई है आदर्श गांव बल्याली, जिला भिवानी, हरियाणा से। दर्शन लाल बंसल, सुदेश, परवीन, ममता, कमल, गर्विश, तमन्ना बंसल, भाटापारा दितरंगई से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक, जावेंद्र, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरव, साइना, निवान, इन्होंने गीत सुनना चाहा है। फिल्म वीर जारा से गीत है, गाया है लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों ने, लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है मदन मोहन जी ने। आइए साथी सुनते हैं गीत।

साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म वीर ज़ारा से, गाया था लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों ने, लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत दिया था मदन मोहन जी ने। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए स्वास्थ्य कल्याण योजनाएं। भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां सभी वर्गों के लोगों के विकास और कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जाती हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए सरकार द्वारा कई स्वास्थ्य कल्याण योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सस्ती एवं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा चलाई गई जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज और सुविधाएं दी जाती हैं। इसके माध्यम से लाखों परिवार बड़े अस्पतालों में बिना खर्च के इलाज करा सकते हैं। इनके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त दवाइयां, टीकाकरण और जांच की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। अल्पसंख्यकों के लिए स्वास्थ्य कल्याण योजनाएं अनेक जीवन स्तर को सुधारने और एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवा देते हैं गीत। इससे पहले आज की जो अगली फरमाइश है वो है बटिंडा से मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र वीरेंद्र, सिमरन प्रेम, गोला बाजार बक्सर से अभयनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। इन्होंने गीत सुनना चाहा है कुछ कुछ होता है फिल्म से, गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, लिखा है समीर ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने। आइए साथियों, सुनते हैं गीत।

साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म कुछ कुछ होता से। गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने, लिखा था समीर ने, संगीत दिया था जतिन ललित ने। साथ ही साथियों, आज की जो अगली फरमाइश है वो है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरंगई से भगवत वर्मा, और इन्होंने गीत सुनना चाहा है फिल्म साजन से। गाया है अलका याग्निक ने, लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम और श्रवण ने। आइए साथियों, सुनते हैं गीत।

साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म साजन से। गाया था अलका याग्निक ने, लिखा था समीर ने, संगीत दिया था नदीम और शरवन ने। साथियों, फिर से मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार। आकाशवाणी का इरोह तक केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा रात 10 बजे और नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9:30 पर। श्रोताओं ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। शाम 7 बजे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में भेंट वार्ता एक कलाकार से क्रम में आपकी भेंट करवाएंगे चांदीराम कौशिक के साथ और शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर विकास कुमार की बातचीत का विषय रहेगा गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन सकेंगे रात 8:25 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा रात 7:30 पर। एक फिल्म से ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:15 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के मुख्य आकर्षण। सुबह 7:35 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार प्रसारित किया जाएगा कल शाम 5:30 पर। श्रोताओं दोपहर 2:30 पर खेत खलिहान कार्यक्रम आप सुन सकेंगे और कल शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर मंगत राम की वार्ता का विषय रहेगा धान की नर्सरी तैयार करने में सावधानियां और कल शाम 7 बजे ग्रामीण संसार कार्यक्रम में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम चौपाल। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुबह 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे दीपा शर्मा का सितार वादन और इसी कार्यक्रम में कल रात 10 बजे सुनिएगा दीपा शर्मा का सितार वादन। कार्यक्रम सुगम संगीत प्रसारित किया जाएगा कल रात 8:25 पर। श्रोताओं लोक संगीत कार्यक्रम में कल सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे महावीर गुड्डू। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल सुबह 9 बजे। चित्रपट संगीत फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 1:10 पर। कार्यक्रम में फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा कल शाम 7:30 पर। एक फिल्म से कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल रात 9:15 पर और फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत सुनिएगा कल रात 10:30 पर। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब आपको खोए व्यक्ति संबंधी जानकारी दे दें। ये है मंगल सिंह जो कि DLF कॉलोनी रोहतक के रहने वाले हैं जो 9 मई 2026 से अपने घर के पास वाले पार्क से लापता हैं। इनकी उम्र 58 साल है जो मानसिक रूप से थोड़े से बीमार हैं। उनका हुलिया इस प्रकार है रंग गेहुआ गोल चेहरा सीधा पैर से लंगड़ा के चलते हैं सिर के पीछे एक चोट का निशान है जो कि हरे रंग की टी शर्ट और भूरे रंग का पाजामा और पैरों में हवाई चप्पल पहने हुए हैं। इनके बाद बारे में यदि आप कोई भी सूचना देना चाहते हैं तो थाना आर्य नगर रोहतक में दे सकते हैं। दूरभाष नंबर नोट कीजिए 7082991118। दूरभाष नंबर एक बार फिर से सुनिए 7082991118। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 यानी 1143 kHz पर। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक के प्रसारण। 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी चंडीगढ़ से रिले किया जाएगा।
3: दीदी नौकरी लग गई।
4: अरे वाह बधाई हो।
5: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी नया मोबाइल।
5: अरे रुको शहजादे सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
5: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
3: पर दीप
5: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तो।

0: विपक्षी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृह मंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्व अनुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। बैठक में जन जागरूकता, जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए निर्माण कार्यक्रमों और आवश्यक राहत सामग्री और चिकित्सा तैयारियों के पर्याप्त भंडार को सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज

0: aaiar.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे।
1: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: भगवान शिव से जुड़े जो 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। सोमनाथ अमृत पर्व पर अम्बाला छावनी स्थित प्राचीन हाथी खाना मंदिर में भी कल एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी होगा। कार्यक्रम में कलश यात्रा निकाली जाएगी और प्रमुख संतों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों द्वारा भगवान शिव शंकर द्वारा समुद्र मंथन व शिव तांडव के साथ साथ भगवान शिव पर आधारित गीत की प्रस्तुति भी दी जाएगी। फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी के शिव मंदिर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आयोजन को सफल एवं व्यवस्थित बनाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण और उससे जुड़े राष्ट्र गौरव के विषयों को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम की खास बात यह रहेगी कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ से तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र से लाइव संबोधन भी होगा। इसके लिए लाइव प्रसारण की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़ सकें। उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, पेयजल, बैठने और यातायात प्रबंधन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की हिरासत में भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हिसार आकाशवाणी केंद्र में सुगम संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गायक सुमेश जोशी ने प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम प्रमुख पवन कुमार ने बताया कि आकाशवाणी की समृद्ध विरासत को लोगों तक पहुंचाने के लिए 90 वर्ष पूरे होने पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी 17 तारीख को आकाशवाणी हिसार में एक मैराथन भी आयोजित होगी, जिसमें आकाशवाणी की समृद्ध विरासत को लोगों के सामने लेकर जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार यह लोगों की आवाज बनी और किस प्रकार देश के लोगों ने इसको अपनाया। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में नगर निकाय का आम चुनाव और पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हिसार में 72%, सांपला में 71% और उकलाना में 69% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: खो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है?

0: आज कितना है लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम सुननीय सारे बन भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। किसान भाइयों, इब गर्मी पड़े है और गर्मी पड़ेगी क्योंकि मौसम आ रहा है गर्मी का। आज 10 मई होली, मई का और जून का महीना तो भीषण गर्मी खातर माना जावे है। तो इस मौके पर हमने कई सारे ऐसे काम करने हैं जो आगे आने वाले टाइम खातर हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे। एक तो बात आवे है बार बार गहरी जुताई की। कुछ भाई तो इस काम ने अपनावे हैं लेकिन कुछ नहीं सोचे हैं कि भाई कोई खास सी जरूरत नहीं है। मार दो ऐसे साधन है कि जुताई की जरूरत है, एक कब खेत में कह घुमाओगे और खेत साफ सुथरा हो जाएगा। साफ सुथरा हो जाएगा इसी बात नहीं है, साधन है, अच्छी बात है, तकनीक का प्रयोग भी करा हम, लेकिन जमीन में ताकत बनाने की जब बात आवे है तो अलग अलग तरीके से हमने काम करना पड़ा है। पहले हमारे जो बड़े बड़े थे वो क्या कराया करते, जमीन ने खाली छोड़ा करते, बाह देंदे, छोड़ देंदे। लेकिन ईब सघन खेती का दौर है, इतनी तो जमीन मार दो रहनी है, खाली भी छोड़ लिया ना बो भी लेवा। खाली तो नहीं छोड़ने का मौका लगता हूँ, कोई मजबूरी में खाली रह जाए तो अलग बात है। ईब तो हमने फसल के साथ साथ कुछ इसे तरीके अपनाने पड़े हैं कि उन ते जमीन की ताकत बरकरार रह जाए। गोबर की खाद भी कम पड़े है क्योंकि पशु कम रखने लग गए। पहले पशु भी ज्यादा होया कर दे तो गोबर की खाद लगभग हर साल खेत में चली जाया कर दी, लेकिन ईब इतना गोबर ना होने के कारण हम किते तो मान लिया गौशाला में लेकर आए, कीते तो भी लेकर आए, पशु वैसे ही कम रखे हैं तो कमी पड़ रही है गोबर की खाद की भी। दूसरा कुछ भाई किए करे हैं जिन दौरे गोबर की खाद बनने का ब्योत्स है, वह सीधा गोबर ने खेत में ले जाकर घेर दे हैं, उसका वैसे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि खेत में डिमक और आ जाए। वो जो गोबर घेरा है वो खेत ने ऊंचाई करने खातर घेरे हैं और कोई उसका फायदा नहीं होता। गोबर की खाद हुआ है गली सड़ी ओढ़ जो कम से कम भी 2 साल पुरानी तो जरूर हो, और किसी खड्डे में बना रखी हो उस खड्डे में पानी भी देना पड़ा है। कई सारे तरीके हैं बनाने के, जिसने बढ़िया तरीक़त बना रखी है वो ये जब फायदा रहा है जब वो उस खाद ने घेर ले। तो फिर ईब हमें कुछ इसे तरीके अपनावा, एक तो गहरी जुताई की बात चली थी, गहरी जुताई एक बार कर दें, जैसे ही गेहूं की फसल हमने ठाई है तुरंत बाद कर दें, चाहे 15 दिन खातर खेत खाली रह जाए बहुत है। उसमें क्या होगा कि मोटे मोटे जो डले पाटेंगे ना, फिर ऊपर बारिश हुआ है, तेज धूप लग गए है, आंधी तूफान आए हैं, तो ये कई सारी चीज मिलकर जमीन में ताकत बनाऊंगी। और सूत्रकर्मी ने मारन खातर सब तो बढ़िया यू तरीका है कि भाई गहरी जुताई कर दो, मिट्टी पलटन वाले अलते कर दो, मोटे मोटे डले पाट जा, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जा। अल्टा पलटी मिट्टी की करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद जब कोई बारिश हो जाए चाहे हम पानी देवा हाँ, जब हम पावा हाँ, तो कोई खरपतवार भी नहीं होता बाद में, खरपतवार का बीज है वो भी खत्म हो गया है, और कोई सूत्रकर्मी आदि की कोई समस्या है तो वो भी समस्या मिट जा है। बात या छोटी सी जरूर है, इसमें लगता कुछ नहीं लेकिन फायदा बहुत रहे है। दूसरा काम वो है हमारा फसल चक्र अपनाने का, इसका भी बार बार जिक्र आओ है, डॉक्टर भी खूब बताओ है, हम भी चौपाल में बैठा जब जिक्र करा हाँ। फसल चक्र अपनाण में हमारा लगता कुछ नहीं लेकिन जमीन की सेहत जरूर सुधर जा है, खर्च कम हुआ है, अगली फसल बोएंगे तो उसमें थोड़ा सा कम खर्च करना पड़ेगा। हमने मान लो पहले दलहनी फसल ले रखी है, आगे कोई दूसरी फसल लेंगे तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा हम कम भी डाल देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो फसल बदल बदल कर लेने दे रहे हैं, एक के दो फसल का पाछे पड़ने की जरूरत नहीं है। समस्या की तो है कि उन फसलों में फिर कीड़े बीमारी कुछ आने लग जाए वो ज्यादा, और दूसरा एक डर और बन गया है कि जो कीड़े बीमारी आए हैं हम उन पर किसी कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं तो भी बात नहीं बनती। कारण क्योंकि वो एक कीटनाशक बार बार छिड़काव करने तो वो कीड़े उसके आदि भी हो जाए दवाई के। तो फिर सलाह यह भी दी जाया करे कि भाई दवाई का बदलाव करो, ईब का जिस दवाई का छिड़काव करे है अगली बार जो दूसरी दवाई का छिड़काव करो। तो इस तो बढ़िया तरीका तो यू है, एक बार गेहूं बो लिया, अगली बार उसमें बरसम बूझा, ज्वार बूझा, बाजरा बूझा, मान लो धान ला दिया तो अगली फसल हो उसका कोई सब्जी की ले ले, कुछ ना कुछ इस तरीके का बदलाव करे कि भाई फसल चक्र अपनाया जा। और फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम जो कर ईब मई का महीना है, ईब इस मौके पर हमें जुताई भी बढ़िया तरीके से कर सका हाँ, खेत ने थोड़ा सा खाली भी छोड़ सका, हाँ उसका तुरंत बाद फिर फसल लेने का काम चल जाएगा। तो ये तो कुछ बात थी अपने खेत संबंधी, खेत में जान क्यों कर बनाई जा। फिर बात आओ है अपना जो काम दाम हम करे जाओ है खेत का, इसके साथ साथ हमारा दूसरा काम वो है पशुधन की संभाल का। पशुधन की संभाल भी बहुत जरूरी हो है, क्योंकि महंगा पशुधन है और जीव है किसान भाइयों से सस्ता भी हो, उसकी संभाल करना हमारा फर्ज बने है। संभाल में एक तो यह बात आओ कि उसका बंधन खोलने का हिसाब के बने है, उसकी खुआन पान का के हिसाब बने है, मौसम का हिसाब किए देखा कि जिस हिसाब पर उसकी देखभाल थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, वह सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। तो किन किन बातों का और ध्यान करना है उसकी खातर एक बातचीत से अपने दोहरा वह सुनेंगे, उसके सुने पाछा हमने बेरा लग जाएगा कि इस और संभालते पशु और ज़्यादा खुश रहेगा और ज़्यादा हमारा मुनाफा दे पाओगा। तो पहले ये बातचीत सुन लिया हाँ
2: भाइयों, आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल, और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर विकास चौधरी जी को। आप पशु चिकित्सक हैं और लाडवा जो कि जिला हिसार में है वहाँ से आप पधारे हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम
2: जी। डॉक्टर साहब गर्मी का मौसम जो आता है तो उसमें आदमी है वो तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता है, सर्दी गर्मी का ध्यान रख लेता है, लेकिन पशुओं का ध्यान रखना अपने से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि अब तो पशु भी इतने महंगे हो गए हैं, उत्पादन उनसे बहुत अच्छा मिलता है, अगर कहीं थोड़ी सी भी कोई दिक्कत होती है तो जो पशु का दूध उत्पादन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है।
3: जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन को टैग किया है। आजकल जो पशुओं की स्थिति है, जो पशुपालन की स्थिति है अगर हम कहें, तो वो पशुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है लोगों का, क्योंकि स्पेस कम है, साधन कम है, महंगे भी हो गए हैं, तो इसलिए जो रख रखाव है बहुत मुश्किल हो गया है।
2: जी।
3: और मौसम के हिसाब से ये भी जरूरी है कि हर चीज़ का अपना देखभाल

0: बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही मौसम के हिसाब से पशुओं का देखभाल भी बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: अगर हम स्पेशली बात करें कि आने वाले समय की, अगर हम आज से देखें तो लगभग अब 2-3 महीने जो लगातार आगे मौसम रहेगा, ये मौसम एकदम से सर्दी के विपरीत का मौसम लगभग लगभग हम कहते हैं, जिसमें अब ये गर्म लू भी चलेंगी, गर्मी भी
1: जी
0: बढ़ेगी, तापमान भी बढ़ेगा। तो इसमें जो पशुओं का खाना पीना है, दूध उत्पादन क्षमता है, इवन प्रजनन क्षमता भी, इन सभी पे बहुत बुरा असर पड़ता है अगर हम उनको प्रॉपर देखभाल
1: देखभाल
0: ना
1: ना
0: करें।
1: करें। जी डॉक्टर साहब, अब क्योंकि बहुत से भाई तो ये करते हैं कि अपना पशु रात में तो बाड़े में रख लिया और उसके बाद में बाहर पेड़ के नीचे या कहीं थोड़ी सी छाया दिखे उसके नीचे बांध दे हैं। तो अब क्योंकि गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है, तो सबसे पहले तो इसी के बारे में जानना चाहूँगा कि कब तक हम पशु को बाहर रख सकें, खुले में रख सकें।
0: देखिए, इसका सिंपल सा साधारण सा जो उत्तर है वो यही है कि हमें एक तो ये पहचानना होगा कि मौसम की गर्मी किस अनुपात में बढ़ रही है।
1: जी
0: अभी जो लगभग 1 महीना आएगा, टेम्परेचर लगभग 40-45 के बीच में करेगा, फिर
1: जी
0: इसके बाद मई जून में जाके अगले 1 महीने बाद ये 50 तक, 48-50 के बीच में, ये दोनों टेम्परेचर्स का जो तापमान को हमें देखना होगा। जो पहले वाला तापमान है, मैं नेक्स्ट 1 महीने में इसमें गर्म लू चलेंगी, जहाँ से हम गर्मी की शुरुआत मान सकते हैं,
1: जी
0: तो उस गर्म लू का अपना एक असर पड़ता है पशुओं के स्वास्थ्य पे। उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि पशुओं का शरीर का तापमान बढ़ता है जैसे ही हवा चलती है, लेकिन गर्मी बढ़ने से पशु अपना एक, उनका खुद का अपना एक कूलिंग सिस्टम है परमात्मा ने, जिसको हम कहते हैं कि वो अपना पसीने के द्वारा निकाल लेते हैं,
1: जी
0: सांस द्वारा है, लार द्वारा है, ये कई ऐसे मेथड है जहाँ से शरीर की गर्मी का जो तापमान बढ़ता है तो उससे हम उसको नेचुरल या उस सिस्टम से डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक तौर पे इसके अगर हम रख रखाव देखभाल की बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जहाँ भी आपने पशु बाड़ा या पशुओं को रखने का स्थान बनाया, तो जैसे ही आपको लगे कि सुबह का एक जो तापमान कम होता है, उसके बाद जैसे ही तापमान बढ़ना शुरू होता है, तो सबसे बड़ी नेसेसिटी है कि पशुओं का जो बाड़ा है वो छायादार पेड़ों से घिरा हो, या फिर बाड़ा ना भी बना हो तो पेड़ों के नीचे आसपास काफ़ी संख्या में पेड़ हो
1: जी
0: और पानी की व्यवस्था, उचित व्यवस्था हो। तो ये जो हीट स्ट्रेस है, इसमें इसमें एज कम्पेयर टू उष्माघात, जिसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं, कम घातक होती है।
1: जी
0: इसमें क्षमता घटती है, बट इतनी नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो। पशु अपने स्वभाव के, अपनी प्राकृतिक उससे इम्यूनिटी से इसको एडजस्ट कर लेता है। इसमें पसीने द्वारा, खान पीन द्वारा पशु खड़ा रहता है, टेंडेंसी रहती है, तो उसमें वो अपना एक सिस्टम मेंटेन करके कर लेता है। ये 1 महीने तक चलेगा। अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि बहुत, अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें, इसके अगर
1: असर के
0: नुकसान
1: बारे
0: की
1: में।
0: बात करें,
1: जी
0: तो नुकसान यही रहता है कि थोड़ा बहुत दूध घटता है, पशु मुंह खोल के सांस लेता है, गर्मी का शो करता है कि भाई मुझे गर्मी लग रही है, मैं गर्मी में हूँ, जो उस दौरान से मादाएं हीट में आती हैं या प्रजनन, उस पर असर पड़ जाता है, और आँखों की झिल्लियाँ भी रेड हो जाती है, पसीना ज़्यादा आता है, लार ज़्यादा गिरती है। तो ये सब कारण पानी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए है। लेकिन उसके बाद अगर हम इससे घातक स्थिति की बात करें, तो वो आती है उष्माघात, जिसको हम इंग्लिश में हीट स्ट्रोक बोलते हैं, जहाँ गर्मी
1: लू
0: लग, लू
1: लू
0: लगना,
1: लगना जिसने
0: लू
1: कहा।
0: लगना,
1: जी
0: ये थी कि लू गर्मी लगी, जिसको हम देहाती में गर्मी लग गई।
1: जी
0: अब उस गर्मी लगने के लक्षण होते हैं, उसमें टेम्परेचर जो बॉडी का है वो तापमान नियंत्रण पशु अपने आप में नहीं कर पाता
1: जी
0: और तापमान बहुत उच्च स्तर पर चला जाता है। लगभग लगभग मैं बात करूं तो 106-107 डिग्री से लेकर 110-111 डिग्री तक तापमान बॉडी का एकदम से कर जाता है। और
1: जी
0: जैसे हम अपना लोकल देशी भाषा में, अपने यहाँ हरियाणा की भाषा में बोले, कहते दिमाग में बुखार चढ़ गया, तो
1: जी
0: वो चांसेस रहते हैं कि वो जो बुखार है वो दिमाग पे भी अटैक करे और उससे दौरे पड़ना, पशु खड़ा नहीं रह पाता,
1: जी
0: सांस लेने में दिक्कत आती है, जीभ खोल के सांस लेता है, मुंह पाड़ लेता है, हाँफने लगता है, रबाने लगता है, आँखों की जो झिल्लियाँ हैं वो लाल हो जाती हैं, पशु बिल्कुल दूध उत्पादन क्षमता एकदम से नीचे गिर जाती है। तो ये सारे लक्षण जो है वो आप ये देख लो कि भाई इसका मतलब ये है कि उष्माघात हो गया। अगर तो पशु खड़ा है और धीरे धीरे अपने तापमान को एडजस्ट कर रहा है, सांस ले रहा है, खा रहा है थोड़ा सा, तो वो एक सिर्फ हीट वेव्स को बियर कर रहा है। लेकिन अगर ये सारे सिम्टम आ गए कि जहाँ गिर गया, चक्कर खा के गिर गया, बुखार 110 डिग्री है, तो आप ये मान के चले कि वो उष्माघात का या हीट स्ट्रोक का अटैक हो चुका है। ऐसे पशुओं का बचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर उचित देखभाल ना करें। तो ये सारे तो लक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि पशु इस बीमारी से
1: गर्मी लग गई,
0: हाँ आग गर्मी लग गई इसका
1: जी।
0: अब आ जाता है कि भाई इसका अब उपाय क्या है
1: जी।
0: तो सबसे पहला जो हमारे जो चीपेस्ट और जो
1: सस्ता
0: उपाय है वो है पानी। अपने इसमें इस परिस्थितियों में अगले एक दो महीने तक पानी की भरपूर व्यवस्था रखें। पशुओं को जो सुबह शाम दिन तीन टाइम तक देखें, गर्मी ज़्यादा है उस हिसाब से स्वच्छ पानी से नहलाएं। स्वच्छ पानी की व्यवस्था कई बार अगर गांव में नहीं है, जोड़ है या तालाब बना के रख लें अपने घर में, उसमें आप रखें मैक्सिमम टाइम तक। जो छायादार वृक्ष हैं उनके नीचे बांध के रखें। रात को दिन में अगर बाहर जगह नहीं मिल पाती आपको, आप मजबूरी है कि आपने घर में ही रखना है, तो फिर आप उसमें कूलिंग सिस्टम पंखा वगैरह रखें या फिर उनके रोशनदान ऐसे हों कि हवा का आवागमन आना जाना आसान हो
1: जी।
0: लेकिन छाया हो, पानी हो। और ये अगर पशु ग्रसित ही होगा टाप तो सबसे पहले तो होता है कि ये देखेंगे पशुओं को चक्कर तो नहीं आ रहे, कहीं वो दौरे की स्थिति तो नहीं आ गई
1: जी।
0: अगर दौरे की स्थिति आ गई तो आप ये मान के चलो कि भाई पशु के दिमाग में बुखार चढ़ गया, तो सबसे पहले हमने वही रोकना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप एक काम करें कि ठंडे पानी को लें और उसकी पट्टियाँ या बोरी या कट्टा जो भी मिलता, जो भी कपड़ा सूती कपड़ा है उसको पानी में अच्छे से भिगो के, और इवन बहुत ज़्यादा कन्वल्शन या दौरे आ रहे हैं तो बर्फ भी आप उसमें बांध के सर पे आप बांध सकते हो उसको कपड़े के साथ
1: जी।
0: और बाकी पूरे शरीर को आप ठंडे पानी से शावरिंग करें, उसकी फॉगिंग बोलते हैं, शावरिंग बोलते हैं। फुहारा लेके अपना कोई भी पाइप लेके पानी लेके उसको नहला सकते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर सबसे पहला काम करना होता है ताकि उसको फर्दर नुकसान ना हो, क्योंकि ये एक बार दिमाग में बुखार चढ़ गया तो फिर दिमाग में नसें फटने का खतरा उत्पन्न हो जाता है और उसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, जिसका दिमाग में रिसाव हो गया,
1: नस फट गया
0: वो उसमें फिर पशुओं को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें साथ में आप बुखार की दवा दे सकते हैं। अगर पशु जीभ खोल के सांस ले रहा है तो उसको ठंडे पानी से जैसे ही हम उसको पंखा वंखा लगाएंगे, कूलर वूलर लगाएं, तो वो अपने आप नॉर्मल लेने लगता है। हाँ अगर चक्कर खा के नीचे गिर गया उस स्टेज में आपको अपने निकटतम जो भी पशु चिकित्सालय है वहाँ पे आपको चिकित्सा सहायता के लिए पशु चिकित्सक से तुरंत आपने
1: संपर्क
0: करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब अब थोड़ा जानकारी चाहोगे कि इसमें खान पान का है वो कि कुछ ध्यान रखना
0: खान पान में। खान पान में देखिए रूटीन में हरे चारे की शॉर्टेज हो जाती है
1: जी,
0: तो जो ड्राई मैटर है जिसको हम सूखा चारा बोलते हैं वो वही अवेलेबल होता है। तो कोशिश करें कि आप हरा चारा साथ में दें, क्योंकि जब ड्राई ये सूखा चारा हम भरपूर मात्रा में देते हैं तो ये थोड़ा सा बगैर हरे चारे के ये पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शरीर को अलग से मेहनत करनी पड़ती है इसको पचाने के लिए, पशु की अलग से एनर्जी खर्च होती है, मतलब आप ये उसकी ऊर्जा इसी में लग जाती है भी खाना पचे
1: जी।
0: जब आप ये लगते हो ऊर्जा ही एक काम पे लग गई तो पशु निडाल हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब ठंडा वातावरण अर्ली मॉर्निंग में जैसे टेम्परेचर का चारा दें
1: जी,
0: और लेट में जब सनसेट हो जाए लगभग उसमें
1: टेम्परेचर
0: हाँ दिन छिपे आप उसने खाने दो। तो भरपूर गर्मी में क्या होगा, एक तो हरा चारा उपलब्ध नहीं है, ऊपर से गर्मी है
1: जी,
0: तो उसको पचाना मतलब डबल डबल, एक तो वो गर्मी से लड़ेगा शरीर उसका, एक उसको जो खाया उसको पचाने के लिए लड़ेगा, तो वो फिर अपने आप उसकी जो बॉडी का जो सारी लग जाएगी और पशु निडाल हो जाएगा और दूध की क्षमता से ये घटेगा। इसमें आप अगर कई बार अगर होगी है तो इसमें नमक चीनी का जैसे हम अपने
1: खुद के लिए
0: भी इस्तेमाल करते हैं, भाई चक्कर आ गया, गर्मी लग गई, लू लग गई, तो नींबू का पानी, तो इसमें जब नमक घोड़ नमक का आधी बाल्टी में थोड़ा एक गिलास चीनी गिरी और तुरंत उसमें एक मुट्ठी नमक गिरा और वो पशु का आगे रख दिया, ताकि जो वो बॉडी का पानी है जो डिहाइड्रेशन बोलते हैं वो कम हो बॉडी में पानी भरपूर मात्रा में जाते ही पशु रिजनरेट करना शुरू करते
1: हैं। इसमें अगर हम दाना दे रहे हैं तो उसमें दाने में दलिया है या इस तरह की जो चीज़ है वो हम मिला सकें ताकि थोड़ा सा ठंडक रहे,
0: ये दे सकते हैं। अब देखिए तो ये भी एक लंबा चर्चा का विषय है कि पशु को खिलाना क्या चाहिए। दूध बढ़ाने के लिए लोग अनाप शनाप डाइट देते हैं, देसी घी तेल फला, ये सब बातें समझने की होती है, भाई लंबा टॉपिक है कि पशु की अपनी क्षमता होती है दूध देने की
1: जी,
0: ठीक है, और पशु की अपनी क्षमता होती है उसमें फैट प्रोड्यूस करने की, तो आप अगर एक्स्ट्रा देंगे तो उसके शरीर की एक्स्ट्रा एनर्जी तो उसको पचाने में लग जाएगी, वो तो सारी शक्ति तो उसको लड़ने में लग जाएगी, तो उसका फायदा क्या हुआ
1: जी।
0: तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि इस स्टेज पे आके आप डाइजेस्टिव जिसको हम पचाओ
1: आराम तक जो
0: वहाँ खा सके और पच सके वो देना चाहिए, क्योंकि महीना दो महीने अगर आप नहीं

0: भी देते हैं, मालिक को पशु ज़्यादा दूध देने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप बैलेंस राशन में आप चले जाओ, जैसे 60% गेहूं ले लिया आपने, थोड़ा चना ले लिया 20%, आपने 20% जो मक्के की सरसों है वो मिला ली, तो कहने का मतलब ये है कि 60+20+20 उन्हें चाक्की में दड़ लो आप, ज़्यादा सा बाहर का बाजार का जो बोरियों में आता है ये महंगा होता है, दिखावटी है, इसमें कुछ होता नहीं। और ये घर का है, आप सीधा है 60%, मान लो आपने 3 किलो बनाना है तो 60% हो गया 1 किलो 800 ग्राम है, और उसमें से अपने 600 ग्राम ये सरसों ले लिया, 600 ग्राम अपने चना ले लिया, इसको दड़ लो चाकी में आप मोटा मोटा, और इसमें पका लो, 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर घेर दो, थोड़ा सा आप नमक की मुट्ठी घेर दो, 1 गुड़ की डली घेर दो, ये कंप्लीट राशन हो गया। ये इतना डाइजेस्टिव राशन है जो घर में अवेलेबल है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, पकाओ और दो, पशु भी खाओ।
1: सब ऐसे मौसम में कौन कौन सी बीमारी आने की संभावना
0: है? देखो ये आगे कॉमन सी बीमारियां आती रहती हैं, अब उसमें एक जो जनरल बीमारी है वो सबसे बड़ी बीमारी जो दो ही प्रकार की अब तो जो फील्ड में आती है कि वो तो मुंह खुर रोग की है। मुंह खुर रोग का जो टीका है, टीकाकरण अभियान चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इसका पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट को, और पहले तो गलघोटू और मुंह खुर के जो थे वो अलग अलग टीके लगते थे, अब एक ही बना दिया, भाई पशु पे ज़्यादा अत्याचार ना हो, एक ही प्रिक में हम वो कर देते हैं। ये मुफ्त होता है, टीकाकरण अभियान होता है, अभियान के तौर पर लेते हैं, तो सबसे बड़ी इसमें सबसे बड़ा जो दूध का नुकसान होने का कारण यही है कि ये जो ये बीमारी आती तो इससे होता है, इससे बचाव का एक ही तरीका टीकाकरण करवाएं। दूसरी जो बीमारी है वो थनेला रोग है मेन, जो अब बारिश का मौसम है, जमीन पानी में कीचड़ ये होता है, भैंस उसमें जाके राजी हुआ है, जोड़ों में भी मिट्टी और कीचड़ ज़्यादा हो जाता है बारिश के मौसम आएगा ये, तो इसमें जो थनेला रोग है इसके कई प्रकार के कीटाणु हैं, तो आपको सबसे पहले तो अगर आप लोकल मैनेजमेंट जो आप कर सकते हो बीमारी से बचाव को, वो यही है कि आप लाल दवाई अपने पास रखें। नंबर इस मौसम में जहाँ पे ये बारिश का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम है, तो उसमें आप एक पूरी बाल्टी पानी की भरी, उसमें 4 दाने लाल दवाई के घेर दिए, वो गुलाबी होगा पानी, शक्ल का थोड़ा गुलाबी होगा, वो बहुत अमृत होता है, वो बीच बीच में हर दूसरे तीसरे दिन उसको पिला दें पूरी बाल्टी पानी, जब भी पीने पानी का दो, 4 उसमें चा के पत्ते जितने चुटकी मारी और पानी रंगीन होएगा वो, लेकिन वो क्या के अंदर के सिस्टम को ठीक करेगा, तो उसमें उसी पानी से आप जब भी दूध काटो, आप जो ज़्यादा दूध देने वाला पशु है आप उसके थनों को दो उसको, और फिर दूध निकालो तो आप पशु को बैठने मत दें थोड़ी देर तक, क्योंकि जो दूध की नलकी है खुली रहती है, तो जैसे ही पशु अब आप दूध निकालते हो तो क्या होता है, ये भी एक एक्सरसाइज है पशु के लिए, तो पशु क्या करता है कि थकान महसूस करता है जब हम दूध निकालते हैं, तो वो क्या करता है कि वो बैठने की कोशिश करता है, तो आप उसको थोड़ी देर रखें, और जैसे ही दूध आपने निकाला वापस लाल दवाई से वापस धो के, वो ज़रूर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले तो देखो आपने देखा होगा मग्गा में थोड़ा सा पानी लिया और उसे धो लिया और अपने उसे तो हाथ धो लिए, नहीं आप पहले तो अपने हाथ लाल दवाई का साबुन तो अच्छी तरह धो दूध काटने से पहले, ताकि कीटाणु आपके हाथ में ना रहे। दूसरा ये कि लाल दवाई से धो के और फिर दूध निकालो और फिर जब छोड़ो तो फिर एक बार लाल दवाई के छपके मार दो, उसने साफ कर दो, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है जो आप वहाँ कर सकते हो। और जहाँ आपने पशु बाड़ा बना रखा है, जहाँ पशु रात को रुकता है, वहाँ कीटनाशक का छिड़काव करते रहें, ताकि वहाँ पे भी ज़मीन में भी कीटाणु ना हो, क्योंकि कीटाणु आते ही वहीं से, या तो हवा से आएंगे या ज़मीन से आएंगे। तो ये 2-3 प्रकार के हैं, ये रख रखाव हैं जो
1: सब। एक गर्मियों में एक दिक्कत और हो जाए है, एक तो मच्छर है वो ज़्यादा, जिसके साथ में चीचड़ी हो गए, इस तरह के जीव जंतु भाई जो परजीवी है उनका भी बहुत
0: बिल्कुल नहीं। देखो जो इन्फेक्शन के सोर्स ऑफ जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम अंग्रेजी में बोलते हैं, जो कारण है बीमारी के, वो यही है, मक्खी है मच्छर। अब देखो ये तो आपको फिजिकल प्रोटेक्शन का मामला है, जाली लगाते हैं, प्रबंध करना पड़ता है, आपे भी आपे घर में पहले नहीं होते थे तो वो छतरी लगा के सोते थे, वो मच्छरदानी बोलते थे जिसने, वो मच्छरदानी है लगाते हैं लोग, अच्छा फैन है और वो है
1: पंखे,
0: तो पंखे उनकी हवा से भी उड़ते हैं। बाकी जो आप चिचड़ और ये बात करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पेट के कीड़े और चिचड़, ये दो चीज़ें भी मैं समझाना चाहूँगा। जो पेट के कीड़े हैं वो भी अंदर के चिचड़ हैं, वो खून पीते हैं, वो सारा भोजन वो खाते हैं, तो आप 6 महीने में जो कीड़ों की दवाई है वो वहाँ पशु अस्पताल में, अपने नज़दीक के पशु अस्पताल में जाएँ, और वो निःशुल्क मिलती है आपको, हर एक बार देने के बाद 6 महीने ज़रूरत नहीं होती, 6 से 8 महीने आपने दे दी, फिर एक दे दी, फिर 6-8 महीने ज़रूरत नहीं, पर ये रेगुलर देते रहना चाहिए। अब चिचड़ का ये है, चिचड़ जो है वो पशु के शरीर से नहीं आते, वो जमीन से आते हैं
1: जी।
0: तो आपको जहाँ भी पशुशाला है जहाँ भी बांधने का, एक बार एक दिन के लिए पशु को बाहर ले जाके छाँव में बांध दो, उस सारे घर ने जहाँ पे भी जो कमरा है जो पुलमणी है उसको पाइप के प्रेशर से पानी से लेके दीवारों तक का तीन तीन चार चार फुट तक पानी मार के, हर जमीन में मार के फर्श में, और एक बार धो दो अच्छी तरह।
1: जी
0: और फिर जो स्प्रे आता है इसका जो हार्मलेस आता है, कुछ आपके में भी स्प्रे करते हो उसकी कम मात्रा में वो भी कर सकते हो, वो सारा स्प्रे कर दो,
1: जी
0: लेकिन वहाँ पशु मत बांधने उस दिन,
1: जी
0: क्योंकि वो जहर है, वो पशु चाट भी ले, पानी कहीं इकट्ठा हो गया, पशु पी भी ले, मुंह भी मार दे तो नुकसान हो सकता है। तो वो एक बार स्प्रे करके पूरे दिन के लिए छोड़ दे, पशु वहाँ ना बांधे, एक दिन के बाद 24 घंटे बाद अगले दिन फिर साफ पानी से धो दे ताकि वो सारी दवाई निकल जाए। तो ये काम आप महीने में एक या दो बार कर लें, चिचड़ों की पशुओं की जो ये खून पीते
1: समस्या
0: हैं
1: ये
0: ये समस्या मुक जाएगी आपको। ये एक फिजिकल प्रोटेक्शन का, ये तो आपकी सावधानियां हैं जो आपको घर में रखनी होती हैं, क्योंकि ये बीमारियां ही नहीं है, ये
1: जी
0: रख रखाव का कमियां हैं जिसकी वजह से ये सब आते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, छोटे जो काटड़ू बाछड़ू हैं उनका के कुछ ध्यान रखें।
0: काटले बाछड़ों का तो देखो सबसे तो पहले तो उनका ध्यान ही रखना है, उनको उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने कीड़ों की दवाई रेगुलर देने की।
1: जी
0: जूण है पेट में, कीड़े हुए पेट में, अच्छा आँखें धस गई, डीड आ गई, पानी गिरे है और खा नहीं रहा, कमज़ोर है, ये सारी बीमारियाँ एक ही बीमारियों का एक ही जड़ है, पेट में इसके कीड़े हैं, तो रेगुलर डिवर्मिंग देते रहे। बाकी इनका जो वही जो बड़े पशुओं का है, अब वही गर्मी के दिनों में स्पेशल
1: उनका
0: इनको
1: भी
0: भी,
1: ध्यान रखना।
0: हाँ क्योंकि
1: जी
0: इनमें पशु तो अपनी क्षमता के अनुसार इनको झेल लेता है, पर एक बार ये छोटे बच्चे, अब जैसे मैंने मुंह खोर की बताई थी आपको, अब पशुओं में क्षमता होती है झेलने की, क्योंकि कभी ना कभी टीके लगे होते हैं उसमें प्रतिरोधक क्षमता जागृत हो जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं वो छोटे कटड़ू बछड़ुओं में होती हैं।
1: जी
0: तो हमें यह ध्यान देखना चाहिए वैक्सीनेशन प्रॉपर हो, डिवर्मिंग उसको कीड़ों की दवाई पर
1: टाइम
0: रेगुलर
1: टाइम पे
0: दी
1: डाल।
0: हो,
1: जी
0: खान पान ठीक हो, धूप गर्मी है तो उनका भी ध्यान रखें, वो
1: जी
0: कहीं इधर उधर घूम के अपना वो ना हो, छानादार उसमें बैठे,
1: जी
0: बाकी तो मेन मेन ये।
1: डॉक्टर साहब, ब्याहता पशु हैं उसमें के कुछ ध्यान रखें।
0: देखो जो एक जो हीट में आते हैं पशु, इस ड्यूरेशन में पशु जो है प्रजनन क्षमता घटती है,
1: जी
0: जितना हम मादाएं, हम यूँ कहते हैं भैया हीट में आ गई या नए दूध खातर रड़न खातर तैयार होता है, वो भी साइकिल घट जाता है,
1: जी
0: क्योंकि बॉडी में हीट इतना होता है, वलवल जो स्वेल कर जाते हैं, डिस्चार्ज कम हो जाता है, कई प्रकार के दिखते हैं इन्हीं एक दो महीने में ही आती, घट जाता है।
1: जी
0: तो ये सब चीज़ें जो हैं, क्योंकि इसमें जो हार्मोन इम्बेलेंस का खतरा ज़्यादा रहता है इस गर्मी की वजह से, वो सारा बिगड़ जाता है। तो बेसिकली आप इन एक दो महीने में पशुओं को गर्भाधान करने से थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी रखनी चाहिए, कि कोई बात नहीं, एक आधी हीट अगर आप मिस भी कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पशु ऑलरेडी हीट में, गर्मी शरीर में वैसे होगी, ऊपर तक गर्मी वैसे ही है,
1: जी
0: तो हम जो है इन इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा अवॉइड करते, लेकिन ये नहीं है कि भी बिल्कुल ही नहीं करना, जो पशु स्वस्थ है और जो हीट में लक्षण पूरे दिखा रहा है, आप उनका बेशक आप मतलब झोटे से ना मिलवाएं, एक्सरसाइज ना कराएं, आप उसमें सबसे बढ़िया है कि आराम से जाके
1: बीज
0: उसमें
1: रखवा लें।
0: बीज रखवाएं आपको,
1: जी
0: जो सबसे सुंदर और सेफ तरीका है, क्योंकि उसमें आपको मेटिंग कराने में, झोटे के दौरान जाने में नुकसान का खतरा ज़्यादा बना रहता है, इसलिए मेरी तो यही है कि आप कृत्रिम गर्भाधान जो पशु अस्पतालों में जो एक नॉमिनल फीस द्वारा सरकार का एक कार्यक्रम है, आप उसको अडॉप्ट करें इन दिनों में और उन्हीं पर जाए।
1: जी तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है कि अपने पशु का ध्यान रखें, गर्मी से बचा कर रखें, पानी का ध्यान रखें, चारे दाने का ध्यान रखें, छोटे काटड़ू बाछड़ू हैं और जो पशु हैं उन कीड़ों की दवाई पिलाएं, और चींचड़
0: वैक्सीनेशन,
1: वगैरह है
0: टीकाकरण भी
1: और
0: है, कई हाँ
1: टीकाकरण है उसका
0: टीकाकरण
1: उसका
0: जरूरी
1: खास
0: है।
1: ध्यान
0: हाँ जी
1: रखें।
0: हाँ जी
1: तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर विकास चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, आपका भी, आकाशवाणी का भी, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।
2: यह तो सुनी भाई बातचीत, वे गर्मी के मौसम में अपना जो पशु है उसकी देखभाल किस तरीके से करनी है। पशु संभाल तो पूरे साल खातर मांगे है, लेकिन ये गर्मी का मौका हो उसमें थोड़ा सा ज्यादा ही ध्यान हमने रखना पड़ा करे, तो हम ध्यान रखा और ईब इस बात का भी ध्यान रखा कि टाइम हो गया है मनोरंजन का। एक रागनी सुनेंगे जिसके गायक कलाकार रहेंगे सत्य फरमानिया और उनके साथी।

यह तो भैया ने रागनी सुनी जिसके गायक कलाकार थे सत्य फरमानिया और उनके साथी। और ईब देखा तो जो अपना कार्यक्रम है कृषि जगत इसका टाइम तो ईब इतना ही। अगला कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार। आकाशवाणी का युरोत केंद्र है ई बाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और ग्रामीण संसार में भैया ने एक सथल रिकॉर्डिंग पर आधारित बातचीत सुनवाओगे। एक कलाकार तो बैठ करी थी कई दिन पहले अपने रेडियो कलाकार हैं श्रीमान चांदीराम कौशिक जी। उनते बातचीत हुई है के कुछ उन अपना अनुभव बताया है वो भी सुनांगे। लेकिन रेडियो कलाकार हैं तो उन रेडियो में कुछ रागनी भी गा रखी हैं वो हम सुनते चल रहे हाँ। लेकिन एक रागनी की शुरुआत पहले करांगे चांदीराम कौशिक जी के नाम पे कि भाई अपनी गाई ओड़ इतने दिन पाछे वो पहले उस रागनी ने सुने और फिर हम सुनांगे उन तो जो बातचीत हमने करी है वो के रही है। तो चांदीराम कौशिक जी की गाई ओड़ पहले एक रागनी सुन लिया।

0: भैया या तो रागनी सुनी गायक कलाकार थे चांदीराम कौशिक के, और ईब सुना दिया भैया ने जो उनते बातचीत मारी हुई हैं। हमें चांदीराम कौशिक जी के निवास स्थान पर गए थे, उनसे मुलाकात करी है हमने, बहुत बढ़िया लगा उनकी बातचीत, तो बड़े प्रभावित हुए हमें। तो ईब आप सुनो उनते के मारे सवाल जवाब रहे हैं। भाइयों आज के दिन अपना सौभाग्य समझें, और एक ऐसी शख्सियत जो काफी दिनों से सिर्फ नाम तो हमने सुना था लेकिन उनसे मुलाकात नहीं कर पाए थे, हालांकि उनकी भी इच्छा थी कि मैं आकाशवाणी में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे मिलूं, वो भी जागृत हुई थी उनकी। लेकिन आज एक समय ऐसा है कि हम सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं जो भी आकाशवाणी वाले हैं, और मास्टर जी हैं चांदीराम कौशिक जी, ये हैं कैथल से, अपने रेडियो के कलाकार भी रहे हैं और काफी नाम भी इनका रहा है। मन की इच्छा थी लेकिन कहते हैं कि समय बलवान होता है, मुलाकात तो उसी समय होती है जब वो निश्चित होता है। आज इनके घर पे गए, मिलने की इच्छा थी, बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, बहुत बढ़िया बोल चाल रही, तो फिर विचार किया कि इनके जो अनुभव हैं पुराने उनसे रूबरू होंगे तो हमने भी कुछ सीखने में लगा, और जो श्रोता हमारे वो भी कुछ बहुत सारा इसमें सीख पाएंगे। तो मास्टर जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार। आकाशवाणी की सारी टीम को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार जी।
0: अब टीम में हमारे साथ है हमारे बड़े भाई संपूर्ण सिंह जी, बलजीत भाई, अनिल भाई, ये भी साथ में बैठे हैं। तो करें शुरुआत, मास्टर जी के दर्शन तो हो गए, ये भी कुछ इनसे बातचीत का भी।
2: मास्टर जी बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे मास्टर जी के, जो आपकी थोड़ी पारिवारिक स्थिति, जो बचपन आपने बीता जा जिया है, तो उसमें कुछ किस तरह का आपका रुझान रहा, और पहले थोड़ा पारिवारिक स्थिति के बारे
0: पहले
2: में।
0: तो उम्र बता दो कितनी को होगी।
1: देखो जी, मेरी उम्र इस समय लगभग 71 साल की होगी जी।
2: जी
1: 28/10/1954 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है।
2: हम्म।
1: लगभग 71-72 साल की उम्र होगी। और जीवन जो है, मेरे पिताजी थे, मेरी माता जी थी, उनका बड़ा आशीर्वाद था मेरे ऊपर, क्योंकि मैं सबसे बड़ा लड़का था उनका।
2: हाँ।
1: और मेरे

0: करते थे और प्रार्थना जो प्रेयर करवाते थे उसमें भी मतलब कई बार अध्यापक रुचि रखते थे भी कोई भजन गाना कविता सुनाओ, तो बाल सभा में भी हम गाते थे जिसमें भी हरियाणवी ही भजन गाता था।
1: शुरू से चस्का लग गया आपने।
0: शुरू से
1: तो किस तरह से सामंजस्य बिठाया आपने पढ़ाई के साथ साथ और फिर गायन का भी?
0: देखिए जैसे खाने के साथ साथ पानी की जरूरत होती है ना, तो इसी तरह खाने हमारी जिंदगी के साथ
1: जी
0: एक जुड़ा हुआ पहलू था गायन का भी
1: जी,
0: कि भी हम इसको सीखें।
1: अच्छा,
0: बड़ी रुचि हुई। सांग भजन प्रचारी देखते थे हम पहले कंपटीशन और ये कोई ऐसा तो था नहीं।
1: हाँ।
0: प्रचारी लोग होते थे हमारे समय में
1: जी,
0: और सांग होते थे जैसे रामकृष्ण व्यास जी, बाजे भगत जी, बनवारी लाल ठेल जी, धनपत राय जी, तो ऐसे ऐसे सांगी, पंडित मांगेराम भी देखा मैंने जी लास्ट में
1: जी जी।
0: तो सांगी देखा तो बड़ा शौक था मुझे भी, मैं भी गायन में।
1: कोई याद है जो ऐसी रचना जो आपने शुरू में गाई हो?
0: शुरू में तो कुछ ऐसे थे जी, मुंशी राम की रचना है, मतलब शुरू से मतलब बच्चे थे
1: जी,
0: तो मुंशी राम के गाया कर दे जी एकदम, मतलब थोड़ी बहुत शब्द याद होंगे
1: एक दो लाइन थोड़ा मारा ही मनोरंजन हो जाएगा, पता भी लग जाए श्रोता भाई बहना ने।
0: तो कुछ ऐसे गीत था एक हरिश्चंद्र के किस्से में था जी, सोडा वाटर भरी सकंजी पीले पकड़ गिलास, तेरे मात पिता ने पानी पी लिया तो पीले रोहतास
1: जी।
0: तो कुछ ऐसी ही रचनाएं जो है ना मुंशी राम दांडली वाले की गाया करते थे जी उस समय
1: जी।
0: बाद में पंडित जिया की रचनाएं हमें लक्ष्मी मांगे की जब 20-25 साल के हो गए हमारे रचनाएं उपलब्ध हो गई थी।
1: अनिल भाई
2: जी, स्वामी राम जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी अनिल जी, नमस्कार।
2: और ठीक ठाक है, स्वस्थ?
0: बिल्कुल, धन्यवाद आपका, आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ।
2: तो स्वामी राम जी ये बताइए आपके गुरु कौन है पहले?
0: मेरे गुरु मास्टर कृष्ण चंद जी हैं जी,
2: जी।
0: गुणा डिस्ट्रिक्ट कैथल में गुणा पढ़ता पढ़ला गुणा
2: जी, जी।
0: यहाँ के मास्टर जी हैं और पंडित मांगेराम जी के शिष्य हैं वो, मेरे दादा गुरु मांगेराम जी श्री पांची वाले, और उनके शिष्य मेरे गुरु जी हैं कृष्ण जी, कृष्ण चंद मास्टर जी।
2: अच्छा, यानी मतलब गए राग निशी के बतेरे नुमस है, अर्जुन गुण गुण की जान नहीं किसी राग गाँव से है ना, मांगेराम जी की है ना कविता ही, मतलब मांगेराम पांड जी की त्रिया कविता
0: या कविता ही से।
2: आप उस प्रणाली से हो? बहुत
0: उस प्रणाली से हूँ जिसमें दादा गुरु मेरे पंडित मांगेराम जी हैं
2: जी,
0: और मेरे गुरु जी कृष्ण चंद जी।
2: तो आप कितनी कौन सी अवस्था थी जब आपकी आपने गुरु धारण कराया? शुरू में तो देखो खटका हुआ है चिकन का है ना, तो आपने बताया कि अभी शुरू में सांग जुड़े गुआंडम सुवंडम जाया कर दे, तो बाद में जब आपने गुरु धारण कराया और आपने किस तरह पता लगा कि मैं भी एक कलाकार हूँ?
0: देखिए जब मेरी सिस्टर थी जी वहाँ गुणा गांव में, जब मैं जाता था मुझे गाने का चस्का तो था ही, लेकिन मैंने जब देखा मेरे गुरुजी जो है ना भजन कर रहे थे और मटके बंजू पेटी इन पर मेरे गुरुजी गाने लग रहे थे, देखा मैंने मेरे दिल में भाव है कि भी क्यों नहीं इनको ही गुरु मान लिया जाए, क्यों नज़दीक भी थे। अब कहीं दूर जाते तो किसी को गुरु धारणा करते तो दूर का जाना आना भी बड़ी दिक्कत था, क्योंकि उस टाइम बसा का भी थोड़ा हा रुझान कम था, तो इसलिए मैंने उनको अच्छा देखा अब गाते हुए, फिर उन्होंने सांग भी किए वो भी मैंने देखे मेरे गुरु जी के, लेकिन मैंने उनको ही गुरु धारण कर लिया, गुरु पगड़ी पहना दी उनको।
2: तो इसके बाद में फिर आपने गाना बजाना शुरू कर दिया, तो आप रेडियो सिंगर भी रहे और बाकी भी जिस तरह साइया गाया करते ना पहले, जिस तरह भाई सतवीर सिंह बैंसवाल या जितने भी अपने कलाकार रहे हैं इस तरह भी गए हो?
0: देखिए उसके बाद में 80-82 से ना जी स्टेज पर मंच पर आ गया बाहर, राजकृष्ण भगवान प्रिया मास्टर सतवीर जी पालेराम और सत्य फरवाणिया, ये सभी के साथ मैंने कंपटीशनों में चंडीगढ़ में करनाल कंपटीशन में उचाना कंपटीशन में भिवानी कंपटीशन में बहुत सी जगह इनके साथ मैंने गाया, मास्टर जी के साथ भी और राजकृष्ण के साथ भी, सभी कलाकार जितने रोहतक सोनीपत के थे सबके साथ गाना शुरू हुआ मेरा। तो धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा दिल खुल गया थी, दिल खुलने के बाद मैं मतलब सभी कलाकारों के साथ मिलकर चला, फिर मैंने समझा कि भी मास्टर जी गा रहे हैं, राजकृष्ण जी आकाशवाणी रोहतक में गा रहे हैं, क्यों नहीं मैं भी आकाशवाणी में गाऊं, लोग मेरी भी आवाज को सुने
2: जी, बिल्कुल।
0: मेरा एरिया के अंदर मेरा भी नाम हो भाई, चांदीराम भी आकाशवाणी रोहतक में गा रहा, तो जी फिर मैंने ऑडिशन फार्म भर दिया वहां रोहतक में, उस टाइम एक बार भरा तो मैं फेल हो गया जी।
2: अच्छा,
0: तो मैंने हिम्मत नहीं हारी अनिल भाई, फिर मैंने दोबारा तरक्की की, चलता रहा मैं, चलता रहा मेहनत करता रहा, उसके बाद दूसरी बार फिर मैंने 1900

0: में इंटरव्यू दिया जी, 1990 में आकाशवाणी ने पास कर दिया जी।
1: जी
0: तब से लगातार 18-19 साल या 20 साल मंत्र मना आकाशवाणी रोहतक में गाया जी।
1: बिल्कुल, तो आपके चांदीराम जी ये ध्यान, पहली रागनी जो आपने आकाशवाणी में गाई कौन सी थी?
0: देखिए अनिल भाई, ये तो नहीं मेरे याद है क्योंकि 20-30 साल,
1: किस्सा ध्यान होगा मेरे ख्याल से जब गाया शुरू में।
0: शायद भगत सिंह की रागनी गाई थी जी मैंने।
1: बिल्कुल, भगत सिंह की रागनी आपकी आज भी बातें हैं।
0: यही

0: ये रागनी गाई।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
2: बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। और दलजीत भाई,
1: तो चांदीराम जी सफर है काफी लंबा रहा, 71 साल के हो गए, भगवान करे आगे भी आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, और जितनी हम उम्मीद करा, हाँ उम्मीद गणी करा आपने,
0: बिल्कुल,
1: तो इतनी के और आगे भी अपनी उम्र लो। लेकिन एक बात बताओ, आपका सफर इतना गायकी का लंबा रहा, क्या कोई चेले बनाए?
0: देखिए दलजीत भाई, चेले बहुत बनाए जी।
1: हाँ,
0: जैसे रोहतक सोनीपत में शिष्य है ना जी,
1: हाँ,
0: ऐसे शिष्य इस एरिया में नहीं मिले।
1: अच्छा,
0: क्योंकि वहाँ की रुचि अलग है।
1: हाँ,
0: यहाँ रुचि कम है।
1: अच्छा,
0: एक दो शिष्य मेरे जो है ना आगे बढ़े, दो एक, ज्यादा नहीं है, तो कम से कम भी 30-35 शिष्य है मेरे यहाँ।
1: हाँ,
0: लेकिन वो बढ़े नहीं आगे जी।
1: अच्छा,
0: हाँ, बस वो मातृष्ठा के ही सीमित रहेगी बस।
1: हाँ, सूखे कान पड़वा लिया, आगे चाले को नहीं,
0: आगे को नहीं चाले जी, सिद्धि प्राप्त नहीं करी उन्हें जी।
1: अच्छा,
0: ये दो तीन चेले हैं मेरे जो आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है। फिर आपका पारिवारिक की भी ठीक मौज हो रही है कि कोई कर रहे हैं बालक सेवा?
0: बिल्कुल दलजीत भाई, बिल्कुल।
1: देखियो कदे हम सारे बैठे हैं, आप जन्यू के नो बड़का डर, देख भाई ना क्यों बता दी?
0: नहीं नहीं नहीं,
1: ऐसी बात नहीं है,
0: ऐसी बात नहीं है। देखिए दलजीत भाई, बच्चे दो हैं,
1: हाँ,
0: दोनों बड़े लायक हैं, एक पत्रकार है, एक एडवोकेट है, और एक शादीशुदा है बड़ा लड़का, एक अनमैरिड है। बड़ा अच्छा पारिवारिक जीवन, अच्छा व्यतीत हो रहा है,
1: मतलब कुल मिलाकर भगवान की दी उड़ मौज से
0: जम मौज जम।
1: चलो मौज रहो है, और आशीर्वाद आपका मारे पे भी रहो है। हम भी उम्मीद करा, हाँ कदे मौका लगेगा फिर आओगे, भगवान कदे फिर इजाजत देगा,
0: क्यों नहीं आओ, आपका घर है, जिस टाइम भी आओगे ना स्वागत करेंगे आपका।
1: बिल्कुल ठीक बात है। एक बार बलजीत भाई का और थोड़ा सा जिक्र है कि कहना चाहो। हाँ,
3: चांदीराम जी, आपने हरियाणवी संस्कृति में तो बहुत योगदान दिया और दे रहे हैं, अब तक आगे देते भी रहेंगे। तो इसके अलावा आप कहीं कोई और दूसरा काम या सर्विस वगैरह करी आपने?
0: देखिए बलजीत भाई, मैं हाँ सर्विस करी मैंने।
3: हाँ,
0: मैं 1984 में हरियाणा रोडवेज में मैकेनिक के पद पर नियुक्त हो गया
3: जी,
0: जो मेरी रेगुलर सर्विस थी।
3: हाँ,
0: वहां मैंने नौकरी की 27 साल हरियाणा रोडवेज में, और उसके साथ ही साथ पार्ट टाइम सिंगर में आकाशवाणी में भी चलता रहा जी।
3: किस तरह से समय निकाले आपने, किस तरह से सामंजस्य बिठाया आपस में, नौकरी का भी और साथ साथ में अपना गायकी का भी?
0: हाँ बलजीत भाई, आपने ठीक कही है बात, कर्मचारी के लिए बड़ी दिक्कत होती है
3: जी।
0: लेकिन हमें दिक्कत नहीं थी जी, क्यों, पहला नंबर तो मैं मैकेनिक था जी, दूसरा नंबर ये कि कर्मचारी जो हरियाणा सरकार का होता है,
3: हाँ,
0: उसको 4 महीने के लगातार छुट्टी होती है, कोई दिक्कत नहीं इसको छुट्टी लेने में, 8 महीने ड्यूटी देते हैं कर्मचारी, और 4 महीने जैसे हॉलीडे है, अरंड लीव है, कैजुअल लीव है, और मेडिकल लीव है, कुल मिलाकर के 4 महीने की छुट्टी होती है।
3: अच्छा,
0: और आकाशवाणी जो है ना रोहतक, हमारी सेवाएं साल में दो बार तीन बार लेते थे, उसमें हमें छुट्टियां आराम से मिल जाती थी
3: जी,
0: और हम छुट्टी लेकर के अपनी पर्सनल छुट्टी लेकर के हम आकाशवाणी को अपनी सेवा प्रदान करते थे
3: जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कोई रचना?
0: रचना जी देखो, मैंने तो कोई बनाई नहीं थी रचना।
3: अच्छा,
0: बाकी मैंने दादा लक्ष्मी चंद की और दादा मांगेराम की,
3: हाँ,
0: उन्हीं की ज्यादा गाई, क्योंकि मैं उसी प्रणाली का शिष्य हूँ
3: जी, जी।
0: मेरे दादा गुरु है श्री मांगेराम पाणची वाले, उसी प्रणाली का हूँ मैं, लक्ष्मीचंद की प्रणाली का, उन्हीं की रचनाएं मैंने ज्यादा आकाशवाणी में भी गाई है।
3: बिल्कुल है, आज आपसे मुलाकात हुई क्योंकि आए, हमें आप लोगों के दर्शन हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो हरियाणवी संस्कृति है इसको और जो है दिन रात दिन

0: रात चौगुनी आगे बढ़ाते रहें। और
1: देखिए, धन्यवाद करता हूँ मैं आप सभी साथियों का जो आकाशवाणी की टीम यहाँ मेरे निवास स्थान पर आई और मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि भी मैं आपको आकाशवाणी में इंटरव्यू, तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।
0: बिल्कुल, हम भी आज अपने बड़े भाई साहब के सानिध्य में यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्हीं की प्रेरणा के साथ साथ हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप और हमारा साथ जो है लगातार बना रहे।
1: सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, हमारी संस्कृति को प्रणाम, हमारे संस्कृति सुनने वालों को प्रणाम।
2: चलो, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।
3: भाइयों, या तो सथल रिकॉर्डिंग पर आधारित बातचीत सुन ली और चलते चलते इन के आवाज में एक रागनी और सुन लिया।

या तो सुनी भाई रागनी गायक कलाकार थे चांदीराम कौशिक और ई बगड़ी का। कुछ इशारा ऐसा हो रहा है कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। दलजीत भाई ने इजाजत दो, सारे मन भाइयों ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं दीवाना फिल्म से अलका याग्निक और विनोद कुमार राठौर की आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं लीजिए सुनिए अब आशिक की फिल्म से अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों को। गीत समीर का लिखा हुआ है और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं लीजिए सुनिए ताल फिल्म से अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाजों को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

दिल। श्रोताओं लीजिए सुनिए इस फिल्म से अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों की आवाजों को। संगीत जतिन ललित का है।

श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत से अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ों को। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को स्वरबद्ध किया है आनंद मिलन ने।

दिल है कि मानता नहीं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए इस फिल्म से अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों को। समीर के लिखे इस गीत को स्वरबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

चांदनी, आइए सुनते हैं इस फिल्म से लता मंगेशकर, बाबला और साथियों की आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है शिव हरी ने। कहते हैं कि ख्यालों को किसी आहट की आस रहती है, निगाहों को किसी सूरत की प्यास रहती है। तेरे बगैर किसी चीज़ की कमी तो नहीं, पर तेरे बगैर तबीयत उदास रहती है।

कच्चे धागे। श्रोताओं, लीजिए सुनिए इस फिल्म से सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है नुसरत फतेह अली खान ने। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वदाली ब्रदर्स के गाए सूफियाना कलाम।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वदाली ब्रदर्स के गाए सूफियाना कलाम।

शाह अपने आप को कहते हैं भुलिया, रात को जागता है दिन पीर बनकर बैठ जाता है। अरे कुत्ते भी तो तेरे साथ सारी रात जागते हैं, तू पीर बनकर बैठ जाता, कुत्ते कुछ भी नहीं बनते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे वदाली ब्रदर्स के गाए सूफियाना कलाम। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक के प्रसारण मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेज़ी में, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, दो कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत आठ क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री

0: मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबिल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लावारिस के गीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

छोटी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म लावारिस के गीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक के प्रसारण। 9:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: In the national program of features, you just heard a feature titled Of Memories and Milestones. Thank you for joining us on this journey through 90 years of sound, stories and milestones. Script, Bushida Banerjee. Narrator, Rini Khanna. Additional voicing, Manoj Mainkar. Produced by Nitish Arora for the Central English Features Unit. This broadcast came to you from Akashvani, Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
2: आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
3: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। We bring you a Veena recital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
2: Vidwan D. Srinivas Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D. L. Tulsi ke margdarshan mein Veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
3: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना वाज बोर्न इनटू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। बाय द एज ऑफ 9 ही वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी। The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade Veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
2: Aaj raat ke prasaran mein विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
3: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
2: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
3: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ राम स्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द राग आहिर भैरवी सेट टू आदिताल।

0: साथ ही आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on Mridangam by Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
3: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
4: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान

के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।